ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल

0: केजरीवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की प्रस्तुति में सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश गान।

मोर छड़ी और काली कंबली, होठों पे मुस्कान है, बिन मांगे जो भर देता झोली, ऐसा हमारा शाम है।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है चिंतन कार्यक्रम का। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सत्याग्रह का जन्म।
1: सत्याग्रह के जन्म की कहानी भी कम रोचक नहीं है। 16 नवंबर 1860 को हिंदुस्तानी मजदूरों का पहला जहाज दक्षिण अफ्रीका के शहर नेटाल पहुंचा। ये वही मजदूर थे जो गिरमिटिया यानी बंधुआ मजदूरों के रूप में कोयले की उन खदानों में काम करने के लिए वहां पहुंचे थे जिनके मालिक गोरे थे। सेठ अबू बकर पहले हिंदुस्तानी व्यापारी थे जो व्यापार के लिए 1881 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में उन्होंने दुकान खोली और थोड़ी जमीन खरीदी। हाजी अबू बकर का अनुसरण करते हुए कुछ अन्य हिंदुस्तानी व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका आ गए। इधर अपने 5 वर्ष के गिरमिटिया एग्रीमेंट से मुक्त होने वाले मजदूरों ने स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे कारोबार शुरू कर दिए। इस प्रकार वहां पर हिंदुस्तानी व्यापारियों का एक अच्छा खासा वर्ग स्थापित हो गया। जाहिर था कि यह बात वहां के गोरों के लिए आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। इन गोरों ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को हिंदुस्तानियों के खिलाफ तरह तरह के खौफ दिखाने के साथ प्रदर्शन करने की भी शुरुआत कर दी, जिसकी परिणति था एक खूनी कानून, और इसी कानून के खिलाफ सत्याग्रह का जन्म हुआ। जिस समय दक्षिण अफ्रीका में ये सब घटित हो रहा था, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में वहीं पर ही थे। नियति का ये खेल ही तो था। इस कानून का जिक्र करते हुए गांधी जी ने लिखा था, इस बिल से केवल हमारा ही अपमान नहीं होता बल्कि सारे हिंदुस्तान का अपमान होता है। अपमान का अर्थ है कि निर्दोष व्यक्ति के स्वाभिमान का भंग होना, और हम निर्दोष हैं। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जैसे जैसे मैं उस बिल की धाराएं पढ़ता गया, कांपता गया। उसमें हिंदुस्तान के प्रति द्वेष और घृणा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं देख सका। मुझे लगा कि अगर यह बिल पास हो गया और हिंदुस्तानियों ने कायर बनकर इसे स्वीकार कर लिया, तो दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी कौम के पैर जड़ से उखड़ जाएंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ अब्दुल गनी ने की थी। सभा में जब बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास होने लगा, तो सेठ हाजी हबीब ने अपने भाषण में यह बात रखी कि यह प्रस्ताव हमें खुद को हाजिर नाजिर मानकर पास करना चाहिए कि हम नामर्द बनकर ऐसे कानून के सामने कभी भी न झुकें। और हाजी साहब के इन्हीं शब्दों ने गांधी जी को चौंका दिया, और यहीं से उस सत्याग्रह के बीज का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों जगह एक अहम भूमिका निभाई, और 11 सितंबर 1906 की यही दास्तान है। सत्याग्रह के सिद्धांत को हथियार बनाकर 8 साल के संघर्ष के बाद गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई जीत ली गई। इस विजय से दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिला, और गिरमिटिया मजदूरों पर 3 पौंड का वार्षिक कर लगाने वाले खूनी कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ा।

0: विषय में गांधी जी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि अंत में सत्य की जय हुई, हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य मूर्तिमान हुआ, इसके लिए अटल श्रद्धा थी, अटूट धैर्य की और सतत कार्य करते रहने की आवश्यकता थी। यदि कौम हार कर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई को भूल जाती और कर को अनिवार्य समझकर सरकार के आगे झुक जाती तो वो कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तानियों को और समूचे हिंदुस्तान को लगता। आधुनिक युग को सत्याग्रह का शस्त्र साधन देने वाली ये सभा अवश्य ही इस युग की सबसे महत्वपूर्ण सभाओं में से एक है। यहाँ ये भी याद करना बहुत जरूरी है कि 20वीं सदी में अहिंसा के इतिहास में सर्वाधिक सुनहरा अध्याय लिखने वाले सरहदी गांधी या बादशाह खान ने सत्याग्रह को पैगंबर का हथियार कहा। इस प्रकार सत्याग्रह के सफल प्रयोग ने विश्व में एक सच्चाई, आत्म बलिदान और अहिंसा के सिद्धांत को स्थापित किया।
1: चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सत्याग्रह का जन्म। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब एक नजर आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेगा श्री रामचरितमानस कान पाठ का एक कलाकार होंगे ए हरिहरन। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेगा वार्ता कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव, वार्ताकार होंगे रतनलाल।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनिएगा वार्ता पायरिया रोग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर एस के कठारिया। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा सुबह 7:31। फिल्म संगीत का आनंद आप लीजिएगा सुबह 8:45 पर, 9:25 पर, 10 बजे सुबह, 12:30 पर और 2:45 पर भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनिएगा दामोदर शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोकगीत।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनेगा किशोरी अमोनकर विदुषी का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। कार्यक्रम आज के कलाकार का समय रहेगा सुबह 11 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे फिल्म निर्देशक विमल कुमार के बारे में। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में सुनिएगा चर्चा आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यावसायिक शिक्षा, साथ ही सुनेगा विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं दोपहर 12 बजे। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दोपहर 1:15। इसमें आज चर्चा रहेगी यूनेस्को साइट वैली ऑफ फ्लावर्स पर। मुझे कुछ कहना है सेगमेंट में सुनिएगा मानसून और सुरक्षित यातायात, साथ ही आपको सुनवाई जाएगी कहानी विधि का विधान। कहानीकार होंगी डॉक्टर कविता रायजादा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुनिएगा सरदार जसवंत सिंह की गाई चंद गजलें।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुनेगा पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन राग मांडथुन में, साथ ही आप सुनेंगे मोहित कुमार का पहाड़ी धुन में गिटार वादन। सांधिकालीन सभा के कार्यक्रम

में 5:10 पर आप सुनेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। इसमें चर्चा रहेगी ई सुश्रुत एड क्लिनिक। वार्ता में सुनेगा सफलता की अनदेखी कुंजी है सॉफ्ट स्किल्स। वार्ताकार होंगी कनिका दुबे।

ग्रामीणों कार्यक्रम में शाम 6 बजे आप सुनेगा चर्चा एक पेड़ माँ के नाम। भेंट वार्ता में सुनेगा किसान उत्पादक संगठन FPO। वार्ताकार प्रेम सिंह से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह। साथ ही होगा मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेगा चर्चा अच्छे समाज के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका। साथ ही आपको सुनवाई जाएगी कहानी मन प्रेम। कहानीकार होंगे राकेश कुमार सिंह। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेगा वार्ता मानव जाति के सच्चे हितैषी महर्षि सुश्रुत। वार्ताकार होंगे शरद कुमार गुप्ता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक आप सुनेगा रात्रि 8 बजे और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे से आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का राग मालकोस। श्रोताओं, ये था आज की सभा के कार्यक्रमों का विवरण और अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस खान पाठ। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तन्मन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांत पाठ, गायक कलाकार थे ए हरिहरन। अब समय हो चला है खेती की बातें कार्यक्रम का। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव। वार्ताकार हैं रतनलाल।
1: किसान भाइयों, आप भली बात जानते हैं कि फसल को कीट आदि के प्रभाव से बचाने हेतु कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग घरेलू मक्खी मच्छर, कागज कृमि, खटमल आदि के मारने में तथा फसलों पर लगने वाले कीटों जैसे माहू, चैंपा तथा तनाछेदक, फली छेदक कीट एवं अन्न भंडारण में लगने वाले कीटों जैसे घुन, पई, खपरा, सुंडी आदि में किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग फसल पर तभी करना चाहिए जब फसल को हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीट बहुतायत से हो गए हों तथा फसल को हानि की संभावना हो। अन्यथा एक दो शत्रु कीट दिखाई देने पर कीटनाशकों का प्रयोग हमारे मित्र कीटों जो कि शत्रु कीटों के लार्वों आदि को खा जाते हैं भी साथ में मर सकते हैं। फसल चक्र अपनाकर भी कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जा सकता है तथा फसल कीटों के प्रकोप से बची रहती है। इसके अतिरिक्त कीटनाशक के फसल पर प्रयोग के बाद के अवशेष भी हमारी फसल यानी साग सब्जी पर भारी पड़ सकता है। अतः कम से कम तथा आवश्यक होने पर ही कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित रहता है। कीटनाशक बाजार में विभिन्न ट्रेड नामों से मिलते हैं। कीटनाशकों की खरीद में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। सरकार ने विभिन्न कीटनाशकों की तीव्रता को दर्शाने हेतु विभिन्न रंग को शीशी, ट्यूब या डिब्बों पर प्रदर्शन करने का आदेश दिया है जो कि बाजार में मिलने वाले कीटनाशकों के डिब्बों, शीशी या ट्यूब पर बना होता है। जैसे कि लाल रंग अत्यधिक जहरीला, पीला अधिक जहरीला, नीला कम जहरीला तथा हरा सबसे कम जहरीला कीटनाशक दर्शाता है। विभिन्न रंगों के निशान कीटनाशकों पर दर्शाने का यही तात्पर्य है कि किसान भाई इनका प्रयोग करते समय उचित सावधानी बरतें तथा उनके हानिकारक प्रभाव से बचें। यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि सभी कीटनाशक विष हैं, अतः इनका प्रयोग खेती में समय पर तथा भली भांति सोच समझकर तथा निश्चित मात्रा में ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य तथा पशुधन के जीवन को भीषण खतरा, संभवतः मौत के रूप में भी हो सकता है।

0: किसान भाइयों, आपको कीटनाशक खरीदते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत करा दें। आप देख लें कि कीटनाशक पंजीकृत मान्यता प्राप्त दुकान से ही खरीदें। रसायन केवल सीलबंद शीशी, बोतल या डिब्बों में ही खरीदें। सामान्यतः खुला कीटनाशक न खरीदें। कीटनाशक के डिब्बे या शीशी पर उसकी उत्पादन तिथि तथा समाप्ति की तिथि अवश्य जाँच लें। खरीदे गए कीटनाशक की छपी हुई रसीद अवश्य ले लें, जिस पर आपके द्वारा खरीदे गए कीटनाशक का बैच नंबर व उत्पादन तथा समाप्ति की तिथि भी उक्त कीटनाशक के डिब्बों या शीशी पर अंकित के समान ही हो। इस प्रकार आप गलत कीटनाशक की खरीद से बच सकेंगे। सीलबंद कीटनाशक के प्रयोग करने पर भी यदि कीटनाशक प्रभावकारी नहीं है तो इसकी शिकायत आप उक्त कीटनाशक निर्माण कंपनी तथा कृषि अधिकारी को निवारण हेतु कर सकते हैं तथा उचित मुआवजा मार्गदर्शन हेतु भी पा सकते हैं। कीटनाशकों को गांव ले जाते समय अन्य अनाज, फल, साग सब्जी या सवारियों के साथ ढुलाई न करें। रास्ते में कीटनाशक शीशी आदि के अकारण दुर्घटनावश टूटने से कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे बचें। कीटनाशकों को ठंडे हवादार कमरे में स्टोर करें। कीटनाशकों के रखरखाव में नमी से भी दूर रखने की सावधानी बरतना चाहिए। बच्चों तथा पशुधन से भी दूर रखना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग निश्चित मात्रा में तथा फसल पर आवश्यकतानुसार करना चाहिए। प्रयोग के समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कीटनाशक की निश्चित मात्रा फसल का क्षेत्रफल आंकलन छिड़काव के लिए कर लेते हैं। उक्त कीटनाशक में मिलाने हेतु पानी की व्यवस्था रखते हैं। कीटनाशक को ड्रम या बाल्टी में घोलने हेतु कीप से डालना चाहिए। अपना मुंह भी हवा के रुख से दूर रख तथा अंगूठे से नाक, मुंह तथा सिर ढक कर रखना चाहिए। निश्चित मात्रा में घोल बनाने हेतु उसे किसी लकड़ी की डंडी आदि से सावधानी पूर्वक हिलाना चाहिए तथा ध्यान रहे कि कीटनाशक घोल के छींटे आदि आपके शरीर पर न पड़ें। पशुधन तथा छोटे बच्चों को इस क्रिया के दौरान दूरी रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वैसे भी कीटनाशकों को पशुधन तथा छोटे बच्चों की पहुंच से दूर ताला चाबी में सुरक्षित रखना हितकारी है। कीटनाशकों का प्रयोग केवल संभवतः सुबह शाम ही करें, तेज धूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपका कीटनाशक घोल तैयार है। सिर पर, नाक तथा मुंह पर अंगूछा बांध लेना चाहिए तथा फसल पर छिड़काव हवा के रुख के अनुसार करना चाहिए। छिड़काव करने से पहले अपने हाथों पर दस्ताने या पॉलिथीन लपेट लेना अच्छा रहता है। कीटनाशक छिड़काव या बुरकाव करने के बाद उपकरणों जैसे रबर ट्यूब, पंप, बाल्टी आदि को साफ कर लेना चाहिए। पानी से भलीभांति धोना चाहिए। अपने हाथ पैर भी साफ पानी से धोकर तथा साबुन से हाथ मुँह तथा संभव हो तो नहा लेना चाहिए। उपकरणों की सफाई तालाब में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पशुधन को नुकसान हो सकता है। खाली शीशी तथा डिब्बे आदि खेत में 3-4 फीट नीचे गड्ढे में दबा देना चाहिए। यदि कीटनाशक प्रयोग के समय किसी मानव या पशु पर असर हो गया है तो मरीज को तुरंत उस स्थान से साफ जगह लिटा दें। पानी के छींटे मारने चाहिए। सांस लेने में दिक्कत हो तो उसे कृत्रिम सांस मुंह द्वारा दें। डॉक्टर को भी आवश्यकतानुसार अवश्य बुलाएं। मरीज को साबुन का पानी या एक चुटकी सरसों खिलाकर उल्टी करा दें तथा पानी, चाय या काफ़ी पिला दें। मरीज को विटामिन के मुंह से खिला सकते हैं या इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगवा सकते हैं। अतः किसान भाइयों, कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी बरतकर हानिकारक प्रभाव से बचा जा सकता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव। वार्ताकार थे रतनलाल।

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है, वह है हिंदी। ये कहना है फादर कामिल बुल्के का।

हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये विचार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के

श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, उसके उपरांत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढ विरोधः प्रकटितः। सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितं यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशिया क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युततन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतरतन्त्रांशवित्तीयप्रौद्योगिकीसंस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य, तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं सञ्चालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिकप्रतिष्ठानां चत्वारिंशदधिकनवशतकोटितोप्यधिकरूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां सङ्कटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् सङ्कटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशीव सङ्कट स्थितिः उत्तरपूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिमबंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6-2 पराजितम्। अक्षरपटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और

0: समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants India's exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
1: We have more from a correspondent.
3: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Union Minister of Coal and Mines G. Kishan Reddy will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Minister of Mines has said that it comprises 20 critical

0: and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 30 newly identified blocks and 7 blocks been offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium, tungsten, potash, lithium, cesium, and rubidium. These minerals are critical for clean energy, advanced manufacturing, fertilizers, defense, and other strategic sectors. With 7 tranches of auction completed, the ministry has successfully auctioned 56 out of 88 critical and strategic mineral blocks, achieving a success rate of over 63%. India will host the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad beginning today. The two-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair the meeting. The ministers will deliberate on 4 priority areas, including advancing social security and formalization of labor markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. In football, Spain stormed into the final of the FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semifinal clash at Dallas Stadium in Texas last night. Mikel Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. 16 years since winning his first World Cup trophy, La Rosa will face Argentina of England in the final at New Jersey's MetLife Stadium on Sunday night. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at the Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston, Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 445.2 overs. Skipper Shubman Gill retired hurt with a top score of 80 runs. Akshar Patel made unbeaten 57 runs, while Washington Sundar remained unbeaten with 52 runs. For England, Jofra Archer, Josh Tung and Sam Curran took 1 wicket each. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज वन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता पायरिया रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर एस के कठारिया।
2: अभी तक दंत स्वास्थ्य से अभिप्राय दांतों में कीड़ा लगने के बचाव व उपचार से जोड़ा जाता रहा है। पायरिया जो कि मसूड़ों व दांतों को सहारा देने वाली हड्डी व रेसों पर जीवाणुओं के प्रकोप से होता है, युवावस्था में अधिकतर प्राकृतिक दांत खो देने का कारण पायरिया होता है। प्रायः सभी लोग पायरिया रोग से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि पायरिया रोग को कैसे पहचाने, यह रोग क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। पायरिया रोग मसूड़ों दांतों को सहारा देने वाली हड्डी व जड़ों व दांतों की हड्डी को बांधने वाले रेशों पर प्रकोप डालता है। मसूड़ों तक सीमित इस बीमारी को जिंजिवाइटिस कहते हैं व मसूड़ों के नीचे जड़ों को सहारा देने वाली हड्डी तक फैली इस बीमारी को पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। यह बीमारी विशेष रूप से दांतों के हिल हिल कर गिर जाने का मुख्य कारण होती है। यह रोग विशेष रूप से 25 वर्ष की आयु के बाद प्रकोप डालता है। इस बीमारी में अधिकतर दांत गिरने लगते हैं क्योंकि हड्डी व मसूड़ों में गलाव के कारण ढीले हो जाते हैं। मुंह के जीवाणु जिन्हें हम दांतों व मसूड़ों पर से ठीक से नहीं हटा पाते हैं पायरिया का मुख्य कारण है। हम सबके मुंह में असंख्य जीवाणु होते हैं। सामान्यतः इन जीवाणुओं से कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ तब शुरू होती है जब दांतों और मसूड़ों से इन जीवाणुओं को कम से कम दिन में एक बार ठीक से हटाने में असमर्थ हों। यदि दिन भर दांतों को ब्रश से साफ न किया गया तो जीवाणु डेंटल प्लाक की अवस्था में मसूड़ों और दांतों पर

पर इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी प्रारंभिक परत को आँखों से देखा नहीं जा सकता है, परंतु इस प्लाक के कारण मसूड़े सूजने लगते हैं और दांत बा मसूड़ों के बीच में जगह बन जाती है। इस जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा प्लाक इकट्ठा होने लगता है और मसूड़े ज़्यादा सूजते चले जाते हैं। पायरिया रोग में अक्सर दर्द नहीं होता है और किसी को भी इसकी शुरुआत का पता नहीं लग पाता है। वास्तव में 3 युवकों में से 2 को कुछ न कुछ पायरिया अवश्य होता है, जिनके बारे में उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। दांत के डॉक्टर को दिखाकर पता लगाया जा सकता है कि उनको पायरिया है या नहीं। आसानी से घर पर पहचानने वाले लक्षण हैं लाल सूजे हुए मसूड़ों से

0: वाले लक्षण हैं लाल सूजे हुए मसूड़ों से आसानी से खून निकलना। यदि इस प्रारंभिक अवस्था का उपचार न किया जाए तो यह रोग दांतों को सहारा देने वाली हड्डी तथा रेशों को बांधने वाले तंतुओं तक फैल सकता है, जिससे सब कुछ ये नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी में दांतों को सहारा देने वाली हड्डी और रेशे गल जाते हैं। इसलिए दांत धीरे धीरे अपनी हड्डी के स्थान पर न रहने से ढीले लगने लगते हैं। बीमारी जितनी गहराई तक पहुंचने लगती है उतने ही मवाद बनने की संभावना अधिक होती है। इस अवस्था में मसूड़ों में दर्द होने लगता है। दांतों में कीड़ा लगना और पायरिया का कोई सीधा संबंध नहीं है। पायरिया की रोकथाम के लिए प्रतिदिन दांतों व मसूड़ों को ठीक तरह से साफ करना चाहिए। दांतों की सफाई सामान्यतया टूथब्रश से की जानी चाहिए, लेकिन जहाँ पर टूथब्रश उपलब्ध नहीं है वहाँ पर नीम तथा बबूल की दातून को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पायरिया की देखभाल के लिए इसकी देखरेख कम उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता पायरिया रोग। वार्ताकार थे डॉक्टर एस के कठारिया। आप सुनते हैं देश कान।

0: को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर, लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। कल लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है।
3: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है।
2: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार और उद्योगों से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने कल लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों,

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी। एक रिपोर्ट।
1: उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। समाचार कक्ष प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक हुई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस की टीम आज उनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर कल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण में OSD महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र व अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है जेई के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहले नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई तो इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कल इस संबंध में हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। प्रदेश में TB उन्मूलन की प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में कल एक टेक्निकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े देश भर के 60 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम से कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और जन भागीदारी प्रदेश की टीबी उन्मूलन यात्रा के मूल आधार हैं। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज और विकास से जुड़ा साझा लक्ष्य है। एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने कहा कि एम्स गोरखपुर टीबी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: एसओपी संशोधन के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत

0: कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने कल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आया बड़ा बदलाव, 3 गुना हुई राज्य की प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी की बातचीत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लोकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने घोषित किया उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का।

कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर स्थानीय सूचनाओं पर। विकास भवन में आज आयोजित होगा किसान दिवस। विकास भवन के सभागार में बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसान दिवस आयोजित किया जाएगा। किसानों की समस्याओं और सीडीओ की उपस्थिति में समाधान कराया जाएगा। इसमें कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। किसानों की कृषि, सिंचाई, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, फसल बीमा, विद्युत, नलकूप, सहकारिता एवं अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं एवं शिकायतों का मौके पर सुनवाई कर उनका समाधान भी कराया जाएगा। सीडीओ ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर किसान दिवस में उपस्थित हों और अपनी समस्याएं बताएं और उसमें सुझाव भी आप दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय को मिलेगा आईआईएम इंदौर का साथ। प्रदेश में नगर निकाय की कार्यप्रणाली के अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित और आधुनिक बनाने की दिशा में नगर विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग के अधीन अर्बन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ व भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के लिए मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्तांतरित किया गया। नगर विकास विभाग के सचिव व यूटीआई के निदेशक और आईआईएम इंदौर के निदेशक की उपस्थिति में हुए समझौते के तहत नगरीय निकायों की संस्थागत क्षमता बढ़ाने, आधुनिक प्रबंधन प्रणाली अपनाने और व्यवहार आधारित शहरी प्रशासन विकसित करने का कार्य किया जाएगा। सूचना, शिक्षा एवं संचार व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर रहेगा। पहले चरण में वरिष्ठ अधिकारियों, नगर आयुक्तों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और यूटीआरआई के लोगों के लिए व्यवहार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे।

प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 81,821 पद पर खाली हैं रिक्तियां। इन रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग 2,643 प्रधानाध्यापक पदों के लिए पहले ही अधियाचन भेज चुका है। इसके अलावा करीब 16,000 सहायक अध्यापक और लगभग 2,600 प्रवक्ता पदों का अधियाचन भी जल्द ही भेजा जाएगा।

नमी भरे मौसम में बचें स्टमक फ्लू से। तेज गर्मी और लू के बाद बारिश के चलते भले ही तापमान में कमी आ गई हो, पर यह मौसम में नई तरह की मुसीबतें लेकर आता है। एक गिलास पानी भी सेहत के लिए मुसीबत बन सकता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हिसाब से देश में जल जनित बीमारियां जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। यही कारण है कि NCDC निरंतर खासतौर पर वर्षा के दिनों में जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल खान पान संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है। स्वच्छ पेयजल जरूरी है, पर इसके साथ ही आपको अपने खान पान को लेकर भी उतना ही सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा इन दोनों को लेकर ही होने वाली छोटी से छोटी लापरवाही आपके स्टमक फ्लू को आसान शिकार बना सकती है। बारिश के मौसम में चटपटे खान पान का स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। लोग खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ के प्रति अधिक आकर्षित हो जाते हैं, पर यही आदत उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि अधिकांशतः इसी मौसम में पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ने का कारण इनका सेवन होना है। इन्हीं दिनों में लोग फूड पॉइजनिंग के भी अधिक से अधिक शिकार हो जाते हैं। हालांकि फूड पॉइजनिंग होने पर इसके लक्षण तुरंत दिखने लगते हैं, तो वहीं स्टमक फ्लू का ठीक से उभरने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि स्टमक फ्लू सामान्य तौर पर नोरा वायरस के कारण होता है, जबकि फूड पॉइजनिंग का कारण विषाक्त भोजन है। आपको बता दें कि स्टमक फ्लू पेट से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है, जिसमें डिहाइड्रेशन और इससे उपजी जटिल समस्याएं जैसे मांसपेशियों में ऐंठन, रक्तचाप में भारी कमी के साथ मानसिक भ्रम आदि जैसी जटिल स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर इसके प्रमुख कारणों की हम आपसे बात करें, तो इन दिनों स्टमक फ्लू का खतरा अत्यधिक बढ़ने के कारण इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है गर्म व उमस भरे मौसम में ये बीमारियां फैलने वाले बैक्टीरिया।

व वायरस में तेजी से पनपना। दरअसल उमस व नमी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। यदि स्टमक फ्लू का संक्रमण अधिक गंभीर होता है तो पाचन तंत्र के अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि बारिश के दौरान खेतों में फल व सब्जियां उसी पानी में धो लिए जाती हैं। यह सही तरीका नहीं है। सब्जियों के उगाने, बाजार तक लाने या संग्रह करने के दौरान पेस्टिसाइड्स छिड़काव के साथ इन पर सूक्ष्म जीवों के पनपने की आशंका अधिक होती है। ऐसे में पानी में विनेगर डालकर उन्हें थोड़ी देर भिगो देना चाहिए। साथ ही आपको कुछ बातों का और ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हाथ धोना सामान्य लगता है पर संक्रमण के बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। फोन दरवाजे व के हैंडल, करेंसी नोट, सार्वजनिक वाहनों व ऐसे कई स्थानों से आप खाना खाने से पहले गुजरते हैं। संक्रमण इससे कहीं से भी आपको खान पान तक पहुंच सकता है, इसलिए खाने तैयार करने से लेकर खाना खाने तक हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसी तरह शौच के बाद पालतू जानवरों को छूने या गाइडिंग के बाद भी हाथ धोना आप ना भूलें। सड़क किनारे बिकने वाली खाद्य सामग्री, कटे हुए फल आदि लंबे समय तक खुले में रखने के कारण दूषित व संक्रमित होने की आशंका अधिक होती है। गेहूं व अन्य अनाजों का प्रयोग तभी करें जब उनके स्टोर का तरीका सही हो। इन दिनों इनमें फंगस होने की भी आशंका रहती है, और अगर डायरिया हो रहा है तो इस दौरान स्वच्छता के साथ हाइड्रेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान हल्का भोजन करें। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपना काम भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इसलिए इस मौसम में अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर एक कार्यक्रम आसपास। अब एक नजर खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में। विलुप्त महिला का नाम नेहा, पत्नी धर्मेंद्र, निवासी न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी, ग्वालियर रोड, थाना सदर बाजार, आगरा से दिनांक 5 जून 2026 से लापता है। नेहा की उम्र 33 वर्ष, रंगोरा, कद 5 फुट 3 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है। घटना के समय इन्होंने साड़ी ब्लाउज पहन रखे थे। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना सदर बाजार आगरा को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार विलुप्त महिला का नाम जम्मू, पत्नी मोती, निवासी हज्जाम गली, थाना फतेहपुर सीकरी आगरा से दिनांक 1 जून 2026 से लापता है। जम्मू

की उम्र 90 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, बालों का रंग सुनहरा है, इनका रंग गेहुआ है। घटना के समय इन्होंने सफेद रंग के सलवार सूट पहन रखे थे। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना फतेहपुर सीकरी आगरा को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार विलुप्त महिला का नाम मंजू, पत्नी दर्शनलाल, निवासी ग्राम कुंवर खेड़ा, थाना बसोनी आगरा से दिनांक 20 मई सन 2026 से लापता है। मंजू की उम्र 22 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट 2 इंच, चेहरा गोल है, इनके सीधे पैर पर जले का निशान है। घटना के समय इन्होंने साड़ी पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना बसोनी आगरा को सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार विलुप्त व्यक्ति का नाम सुरेंद्र शर्मा, निवासी रेणुका धाम कॉलोनी तहतोरा थाना सिकंदरा से दिनांक 28 मई सन 2026 से लापता है। सुरेंद्र की उम्र करीब 44 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, शरीर सामान्य है। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना सिकंदरा आगरा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुईं।

और अब बात कर लेते हैं मौसम की। जुलाई की औसत बारिश से अभी तक दूर आगरा, संकट की आहट। ताजनगरी में जुलाई ने अच्छी बारिश का भरोसा हमेशा बरकरार रखा है। बीते 10 सालों की बात की जाए तो सिर्फ 4 बार धोखा हुआ है, यानी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। शेष 6 वर्षों से आगरा के हिस्से संतोषजनक लेकिन बेहतरीन बारिश आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 1991 और 2020 के क्लाइमेट नॉर्मल्स के मुताबिक आगरा में जुलाई की औसत बारिश 245.8 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में ये 24.58 बढ़ती है। इससे कम होने पर औसत बारिश का जो आंकड़ा है वो कम रह जाने का खतरा रहता है। बीते 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है। 2023 में इस महीने सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई, तब सिर्फ 88.0 mm बरसात दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2017 में 107.1 mm, 2024 में 125.7 mm और 2020 में बादल सिर्फ 128.2 mm बरस कर रह गए। शेष सभी वर्षों में औसत या इससे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। आगरा के इतिहास में 1981 से लेकर अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 1994 में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी, तब 532.6 mm बरसात हुई थी, जो आगरा के इतिहास में जुलाई की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है और यह रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है। इस सीजन 4 जुलाई को सीजन की पहली अच्छी बारिश हुई, कुल 13.35 mm बारिश दर्ज की गई थी। रविवार को सुबह तक इसमें 11.8 mm बारिश और जुड़ गई। इसके बाद 7 जुलाई मंगलवार की देर रात से लेकर बुधवार तक सुबह तक बेहतरीन बारिश देखी गई, कुल 53 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद 9 जुलाई को सबसे बड़ी 98.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी, 10 को 1.2 mm और 11 को 2.2 mm बारिश हुई। इस माह कुल 179.95 mm बारिश ही आगरा के खाते में आई है। आगरा की रीजनल औसत बारिश 650.0 मिलीलीटर है। यह जून से लेकर सितंबर तक

मापी जाती है। अभी हुई बारिश के हिसाब से औसत का आंकड़ा पाना मुश्किल लग रहा है। इसके लिए बादलों को 470.5 mm और बरसना होगा। यानी कि अभी आप ये मान सकते हैं कि जुलाई के शेष दिनों में अगर 200 mm बारिश हो जाती है, तब भी अगस्त में करीब 270 mm बारिश और होनी चाहिए। और मानसून के हालात फिलहाल यह नहीं दिखाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आसपास। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़, और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।

0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौपरिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
2: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकास और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
3: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान सुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के

0: उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदा आज से अमल में आ गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है, जिसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशावर अफराद की आमद रफ्त और मुसाबिकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे भारत और बरतानिया की दिफाई शराकतदारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के आवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरक अजम का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए ताबनाक इक्तसादी शराकतदारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे ताउन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशावर अफराद और उनके आजिरों को फायदा हासिल होगा। ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग में सड़कों, रेलवेज, मेट्रो, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयले और मेहनत के शोबों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक 19 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। जमीन को कब्जे में लेने, बाजाबादकारी, जंगलात से मुतालिक मंजूरियों और बैन महकमा जाति तालमेल से मुतालिक मामलात को हल करने की हिदायत दी गई ताकि प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। मरकजी वजीर ने अमल दरामद में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्टों पर नजर रखने के रियासती सतह के ग्रुप कायम करने की भी तजवीज रखी। वजीर मौसूफ ने फसलों में तनोव लाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तौसी देकर किसान क्रेडिट कार्ड की तादाद में इजाफा करके कुदरती ज़राअत, डिजिटल एग्रीटेक और गजाइयत में इजाफे के प्रोग्रामों को फरोग देकर ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के इकदाम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरकजी और रियासती मिलकर काम करेगी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे।

0: धीर जायसवाल ने महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आबनाए हुरमुस से तिजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आबनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासिरा खित्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में आला सतही बैन वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खित्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरा के लिए मखसूस लाइजन अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कीमिया और खाद की वजारत, भारतीय बहरिया, जहाजरानी के डायरेक्टरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाक़ भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था, बैन अलाक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जेर कब्जा पूरे इलाके में ये मुजाहरे खित्ते में पाकिस्तान के दीरीना कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वहशियाना कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें दसियों शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ खित्ते में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू नाफिज है। नीज मवासलात का सिलसिला पूरी तरह मुनकता हो गया है। अकलीती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमेरिका के टेक्सास के दलाज स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेद्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
3: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा, वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया, समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफे अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई इसलाहत का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान, अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपियन यूनियन का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा।

आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म यारियां से। गीत को गाया है मोहम्मद इरफान ने, गीत लिखा है मिथुन ने, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म यारियां से। गीत को गाया था मोहम्मद इरफान ने, गीत लिखा था मिथुन ने, संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म साथिया से। गीत को गाया है सोनू निगम ने, शब्द रचना गुलजार की है, संगीत रचना ए आर रहमान की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

काल फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं अनुराधा श्री राम सुजाता और साथी की आवाज में ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

तुम मिले फिल्म में अभी आपने सुना केके को। सईद कादरी की रचना को संगीत बद्ध किया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म हमसे है मुकाबला से। गीत को गाया है मानो और स्वर्णलता ने। गीत लिखा है पी के मिश्रा ने। संगीत बद्ध किया है ए आर रहमान ने।

मानो सरोनिलता की आवाज़ में अभी आपने सुना कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम था हमसे है मुकाबला। पी के मिश्रा के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 记恨这里。
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरहूब हुसैन का।
2: जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमरोहा में 30 जून को जयंती संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हसनपुर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि गुलाब देवी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व, राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने संबोधन में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी चिंतन, संगठन निर्माण में उनके योगदान तथा राष्ट्र प्रथम की भावना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अमरोहा में 8 जुलाई को मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ एवं विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी ₹1200 का अंतरण कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 8000 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 560 कुल 8560 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों, रसोइयों एवं अन्य पात्र कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने जनपद के कुछ शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षकों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की गई। अपने संबोधन में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि शिक्षा ही देश की उन्नति और विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने 7 जुलाई को अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के गौ आश्रय स्थलों एवं गौवंश संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उपाध्यक्ष ने गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता के लिए सभी गौ आश्रय स्थलों पर भूसा भंडारण, क्रय विक्रय, दान स्टॉक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सुव्यवस्थित रखने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर पल निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा,
3: गो वंश को छोड़े ना, अगर किसी प्रकार की समस्या है अपने कोटे पर नहीं रख सकते हैं तो स्थानीय गौशालाओं में संरक्षित कराने का प्रयास करें। प्रत्येक गो वंश के लिए ₹50 भरण पोषण के लिए सरकार देती है। अकेला ऐसा राज्य जिसमें 16 लाख से ज्यादा गो वंश हमारे 7700 गौशालाओं में संरक्षित किए गए हैं। 1,67,000 से ज्यादा गो वंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों के कोटे पर गौ माता गई है। आपके माध्यम से आह्वान करना है, उस गौ माता को अपने कोटे पर बांधे, सेवा करें। भारत की संस्कृति का मूल आधार गौ माता।
2: पहाड़ों पर हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के बाद अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। जिले के गंगाधाम तिगरी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा तट पर झोपड़ियां डूब गई हैं, जबकि खादर क्षेत्र में गंगा तट किनारे बसे 1 दर्जन गांवों के खेत बैराज से जलमग्न हो गए हैं। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों को आवागमन और पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने बताया,
4: क्षेत्रीय एसडीएम की अध्यक्षता में टीमें खुद ही जा रही हैं बाढ़ से प्रभावित गांवों में और लोगों को राशन का अरेंजमेंट करा रही हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लोगों को शिफ्ट कराना पड़ सकता है, तो उधर शरणालय की हमारी तैयारी है। और जैसे ही बाढ़ का स्तर इस लेवल पे पहुंचता है कि वो

0: हाई टू लेवल को क्रॉस करता है तो हम तुरंत उनको शिफ्ट भी कराएंगे। हर डिपार्टमेंट इसमें सेंसिटाइज्ड है, हर किसी के रोल्स डिफाइंड है, वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस निरंतर जारी रख रहे हैं।
1: वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत अमरोहा में 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग सूर्य प्रकाश पाल, विधायक राजीव तरारा, जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। अपने संबोधन में सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोच्च रखा गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति माँ को समर्पित करते हुए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए एवं उसकी देखभाल करें।
2: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
3: जनपद कानपुर देहात में प्रदेश राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रविवार को जनपद के केंद्रीय विद्यालय नबीपुर में आयोजित बृहद वृक्षारोपण अभियान में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। जनपद में बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और अन्य पात्र कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कानपुर देहात में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अजीत पाल ने इको पार्क में मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। कानपुर देहात में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ब्लॉकों और विद्यालयों में योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा गया। राज्य मंत्री अजीत पाल ने कहा कि ये योजना प्रभावी संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। पात्र शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, साथ ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया तथा अन्य पात्र कार्मिक और उनके आश्रित अब देश भर के आयुष्मान भारत से समृद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अध्यापक अनंत त्रिवेदी ने बताया कि
4: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यालय में कार्य कर रही रसोइयां इस योजना के अंतर्गत लाए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ऐतिहासिक दिन है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए।
3: घाटमपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भोगनीपुर से पूर्व विधायक रहे प्यारे लाल सखवार का बीते बुधवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता दल तथा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सामाजिक न्याय और दलित समाज की मजबूत आवाज माने जाते थे। कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित इको पार्क माती में आयोजित मुख्य कार्यक्रम सहित जनपद के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। पूरे जिले में योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य, फिटनेस और जन जागरूकता का संदेश दिया गया। जनपद में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। धान, मक्का और अन्य खरीफ की फसलों की बुआई के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनने से कृषि कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कानपुर देहात में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों ने जन संवाद, व्यापारी सम्मेलन, किसान चौपाल, योग शिविर, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, आयुष्मान कार्ड वितरण तथा लाभार्थी संपर्क जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। जन प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन से संवाद किया तथा सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। पूरे अभियान के दौरान जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कानपुर देहात के एक दिव्यांग युवक ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ लेकर धीरज कुमार ने अपना उद्योग स्थापित किया और आज वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि 15 अन्य लोगों को भी रोजगार देकर समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण और सरकारी सहायता प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू किया। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर उनका छोटा व्यवसाय आज एक सफल उद्यम का रूप ले चुका है। धीरज कुमार का कहना है कि यदि सरकार की इस योजना का सहयोग नहीं मिलता तो वो अपना उद्योग

0: स्थापित करना आसान नहीं था। योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता मिली, जिससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। आज उनका उद्यम लगातार आगे बढ़ रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। धीरज का मानना है कि यदि युवा सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लेकर उनका लाभ उठाए तो वे नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने वाले बन सकते हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।
3: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम गीत मंजूषा का।
4: हसीना से
3: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अजनबी से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है आर डी वर्मन ने,

0: चुपचाप तुम्हारी पूजा।
1: कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म अजनबी से। गीत को गाया था किशोर कुमार ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत पति किया था आरटी वर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनामिका से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। मशहूर सुल्तानपुरी की रचना को संगीत पति किया है आरटी वर्मन ने।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना घर फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था आरडी वर्मन ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म इजाजत से। गीत को गाया है आशा भोसले ने, गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत से संवारा है आरडी वर्मन ने।

श्रोताओं, आखिरी गीत फिल्म का भी आपने सुना इजाज़त से। गीत को गाया था आशा भोसले ने, गुलजार के लिखे गीत को संगीत प्रति किया था आर डी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजुषा अब यहीं संपन्न होता है।

अब समय हो चला है लोक संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दामोदर शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोक गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे दामोदर शर्मा के गाए कुछ ब्रज लोक गीतों का। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उदित नारायण महालक्ष्मी की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल से। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कार्यक्रम में आप सुनते हैं विशाल दत्तलानी शिल्पा राव को फिल्म अनजाना अनजानी में। विशाल दत्तलानी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

सुखविंदर सिंह ऋचा शर्मा की आवाज में अभी आपने सुना कांटे फिल्म का गीत। देव कोहली की रचना को संगीतबद्ध किया था आनंद राज आनंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हिट स्टोरी 2 से। गीत को गाया है अरिजीत सिंह, समीरा कोपिकर ने। गीत संगीत है आरको का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म ये जवानी है दीवानी से। आवाजें हैं रेखा भारद्वाज, टॉची रैना की, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

ये जवानी है दीवानी इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरताव यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोरी अमोनकर विदुषी का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं और मैं आ चुकी हूं आपके साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आपके मन पसंद कार्यक्रम आज के कलाकार के साथ और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू दुबे। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सच ही कहते हैं कि कोई भी जन्म से कलाकार नहीं होता। हम अपने काम और रुचि के अनुसार चीजें सीखते हैं और उसमें परिपक्व होते जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। साथियों, अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।

तो साथियों, सफल व्यक्तियों की भी अपनी एक कहानी होती है। समय के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है और कलाकार बनता है। तो आज हम आपसे जिन कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता विमल कुमार। जी हाँ साथियों, ये हिंदी फिल्मों के निर्देशक और निर्माता हैं। ये भारतीय फिल्म उद्योग के जाने माने निर्देशक और निर्माता हैं, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल पारिवारिक, सामाजिक और मनोरंजक फिल्मों का निर्देशन किया।

साथियों, जैसे कि हर किसी का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है, विमल कुमार की फिल्मों में परिवार, रिश्तों, हास्य और मनोरंजन का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत निर्माता के रूप में की और बाद में निर्देशन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। विमल कुमार ने कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें छोटे सरकार, सुनो ससुर जी, दुलारा, स्वर्ग यहां नर्क यहां, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्ज चुकाना है, राजा जी जैसी फिल्में शामिल हैं। साथियों, इनका जन्म 15 जुलाई को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से ही की थी। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म आपके दीवाने थी। इसके बाद उन्होंने अगर तुम न होते जैसी फिल्मों का भी निर्माण किया। बतौर निर्देशक उन्होंने 1989 में जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म से अपनी शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही।

साथियों, विमल कुमार हिंदी सिनेमा में एक लंबी और सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का रुख किया। उन्होंने धर्मेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेता और पवन सिंह जैसे भोजपुरी स्टार्स को लेकर देश परदेश जैसी बेहतरीन फिल्मों का भी निर्देशन किया। विमल कुमार को उनकी पारिवारिक और मनोरंजक फिल्मों के लिए भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े सितारों जैसे गोविंदा, ऋषि कपूर, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला और कादर खान के साथ काम किया। उनकी फिल्में भावनात्मक कहानी और यादगार संगीत से भरपूर थीं। पता है साथियों, एक निर्देशक के रूप में उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि वे सरल कहानियों को भी बड़े प्रभावी ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत करते थे। उनकी फिल्मों से भारतीय परिवारों की भावनाएं, रिश्तों की गरिमा दिखाई देती थी, जो कि उन्हें औरों से अलग बनाती हैं।

साथियों, अलग काम करने की कला ही तो लोगों में खास बनाती है, जो कला विमल कुमार को आती थी। उनका योगदान हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने ऐसी फिल्में दी जो परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर देख सकें। यही तो उनकी निर्देशन शैली की सबसे बड़ी पहचान है। साथियों, आज भी हिंदी फिल्म जगत में विमल कुमार का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। साथियों, सम्मान यूं ही नहीं मिल जाता, उसे कमाना पड़ता है, अच्छे व्यवहार से और अच्छे काम से, जिसे विमल कुमार ने प्राप्त किया। काम तो सभी करते हैं, फिर भी कुछ लोगों का काम अलग ही दिखाई देता है, जो उसे अलग पहचान दिलाता है। आज भी उनकी फिल्मों को टेलीविजन और विभिन्न मंचों पर देखा जाता है। नई पीढ़ी के फिल्मकार भी उनकी सरल, प्रभावी और मनोरंजक प्रस्तुति से प्रेरणा लेते हैं।

साथियों, विमल कुमार ने अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। साथियों, एक सफल निर्देशक तो वही होता है जो दर्शकों के दिलों तक पहुंच सके, और विमल कुमार ने यह काम किया अपनी फिल्मों के माध्यम से। साथ ही जरूरी नहीं कि हर बात को सामने से कहकर ही बताया जाए, आप अपने काम के जरिए भी लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं। विमल कुमार ने अपनी फिल्मों के माध्यम से ये काम किया। उनकी रचनात्मकता, मेहनत और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान उन्हें हिंदी सिनेमा के महत्वपूर्ण निर्देशकों की श्रेणी में स्थान दिलाता है। इसी विश्वास के साथ हम उनके उज्जवल योगदान को नमन करते हैं और कामना करते हैं कि भारतीय सिनेमा निरंतर ऐसी प्रेरणादायक प्रतिभाओं से समृद्ध होता रहे। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उनकी ही फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

साथियों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विषय पर और सुनवाएंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत, क्योंकि गीत संगीत सुनने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। और साथियों, पता है संगीत का होना जीवन में बहुत जरूरी है। संगीत हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो साथियों, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

तो साथियों, अभी आपने सुना सरगम फिल्म का ये प्यारा सा गीत, और अब बात करते हैं आपसे एक ऐसे विषय पर जो आज की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, हमारे जीवन में शिक्षा का तो बहुत महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन आपको पता है उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये युवाओं को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक और रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करती है, क्योंकि जीवन में रोजगार का होना बहुत जरूरी है। आज की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और युवा ही अगर खाली बैठेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। और साथ ही जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी ही मिल जाए, प्रयास करना जरूरी है, लेकिन आपके पास किसी हुनर का होना भी बहुत जरूरी है। और साथियों एक बात और, हर किसी में कोई न कोई हुनर तो जरूर होता है, बस जरूरी है उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अधिकारी ही बने, जरूरी है वो आत्मनिर्भर बने। और व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को सीधे रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार कर

0: सकती है। आज की बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय बनती जा रही है। भारत में लाखों युवा हर वर्ष पढ़ाई पूरी करके डिग्री लेते हैं, लेकिन व्यावहारिक कौशल की कमी के कारण उन्हें नौकरी ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। और जीवन में साथियों, काम करना तो बहुत ही जरूरी है।
1: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डालकर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
2: क्या?
1: ये

0: खुल गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: अगर करेंगे झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

तो साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के विषय में, जो कि छात्रों और देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, ये शिक्षा प्राप्त करके सीखने पर केंद्रित होती है, जो छात्रों को व्यावसायिक कार्यस्थल की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग आदि विशिष्ट नौकरियों के लिए तत्काल काम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही ये शिक्षा युवाओं में केवल नौकरी ढूंढने की मानसिकता विकसित नहीं करती, बल्कि उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित भी करती है। अपना व्यवसाय शुरू करने से आप औरों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। साथियों, काम तो कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और लगन से व्यक्ति मनचाहा मुकाम पा सकता है।

0: साथियों, हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमता के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल प्रदान करने के महत्व को बताता है। पता है, आज के समय में केवल शैक्षणिक डिग्री ही काफी नहीं है, बल्कि सफलता के लिए कौशल भी उतना ही आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ये दिवस दुनिया भर में युवाओं, शिक्षकों, उद्योगों और सरकारों के सहयोग से मनाया जाता है। साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अगर उन्हें उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल दिया जाए तो वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और वे आत्मनिर्भर बनते हैं।
1: पत्थर के सब रास्ते

साथियों, हमारा भारत एक युवा देश है। यहाँ बड़ी संख्या में युवाओं में प्रतिभा और ऊर्जा है। अगर उस प्रतिभा और ऊर्जा का सही से उपयोग किया जाए तो ये युवा देश का भविष्य संवारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सही समय पर सही ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत रास्ते पर जाने वाला युवा देश के लिए समस्या भी बन सकता है। इसके लिए कम उम्र में ही उन्हें उचित दिशा निर्देशन मिलना जरूरी है। साथियों, कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। कोई न कोई कारण होता है जिससे कभी कभी युवा भटक जाते हैं। ऐसे में उनका सही मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। साथियों, आज के समय में काम की बहुत जरूरत है और काम की कमी भी नहीं है, बस जरूरत है उसके लिए तैयार होने की। साथियों, आज के समय में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, ऑटोमोबाइल और डिजिटल तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। तो इसके लिए सबको तैयार होना भी बहुत जरूरी है। साथियों, विश्व युवा कौशल दिवस हमें ये संदेश देता है कि शिक्षित होने के साथ साथ कुशल होना भी बहुत जरूरी है। तो आइए, बातें तो ये हुई और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने

0: वाले श्रोताओं के नाम।
1: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है।
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद
1: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
1: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
1: जी,
0: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
1: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
1: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
1: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
1: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
1: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
1: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं,
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, ऑडियो

0: radio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी,
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
7: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले

0: केरल में आता है।
1: हाँ।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
2: ओ।
0: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
2: ओ।
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था।

वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे।

0: पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद

0: त्रिनेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
1: प्रणाम महात्मन।
2: जीते रहो पुत्र।
1: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
2: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
1: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
2: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
1: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है

0: जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
1: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
6: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
7: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला तराना, जिसे हमने लिया है रेड्डी फिल्म से। स्वर तुलसी कुमार और केके का है। नीलेश मिश्रा के गीत को संगीत में ढाला है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला तरन आइए सुनते हैं। इश्क फिल्म से स्वर कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण के हैं। राहत इंदौरी के गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: प्रयागराज से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना ये सुनते हैं सब कुशल मंगल फिल्म से सोनू कक्कड़ और वंदना सक्सेना के स्वर में।
1: मॉडर्न दुनिया

अगला तरन आइए सुनते हैं इंग्लिश फिंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के गीत को संगीत में डाला है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओ, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता

0: समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that under the agreement, nearly all of India's exports to the UK will enjoy duty-free access. The Commerce and Industry Minister mentioned that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by placing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The minister noted that these exclusions reflect the government's strategy of prioritizing food security, domestic price stability and vulnerable farming communities. Prime Minister Narendra Modi has

0: पटेल ने कल लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 30वीं कन्वोकेशन की सदारत की। तकरीब में 279 तलबा की डिग्रियां दी गईं। नुमाया असातजा, मुहक्किकीन, मुआलिजीन और तलबा को मुख्तलिफ बावकार अवार्ड और गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। इस मौके पर शुबे नेफ्रोलॉजी के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद को गवर्नर ने गोल्ड मेडल दिया। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अतिया गबन केस में इंसदाद बदउद्मानी अदालत ने मुजमीन रामाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे का पुलिस रिमांड दे दिया है। पुलिस टीम आज उनको अपनी तहवील में लेकर पूछताछ करेगी। दरअसल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल मुलजिम लोकेश मिश्रा के जेर तामीर मकान पर हतमी नोटिस चश्मा किया। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के OSD महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें 15 जुलाई तक नक्शा और दीगर जरूरी दस्तावेजात के साथ हाजिर होने का हतमी मौका दिया गया है। सिंह ने कहा कि अगर मुकर्रा वक्त तक जवाब या दुरुस्त दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। रियासत के चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने तमाम हुकाम और महकमों को EV चार्जिंग स्टेशनों के कयाम के लिए मुनासिब जमीन की निशानदेही करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में कल एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइवर योजना PM ई ड्राइवर उत्तर प्रदेश में साफ, सब्ज और पायदार नकलो हमल के निजाम को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम पहल है। उन्होंने रियासत में जदीद पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से तैयार करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को सहूलत फराहम करने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 के दफात में तरमीम की है। नजरसानी शुदा SOP के मुताबिक होम स्टे इस्टेब्लिशमेंट अब कम अज कम एक और ज्यादा से ज्यादा 8 कमरों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 से ज्यादा कमरों वाले यूनिट इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन के अहल नहीं होंगे। रियासती सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि 16 बिस्तरों वाले हॉस्टल को भी जुमरे के तहत अहल समझा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पोर्टल पर खत्म होने की तारीख से 3 माह कबल अज खुद तजदीद की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने कल सब इंस्पेक्टर और उसके मसावी ओहदों के लिए 2025 के बराह रास्त भर्ती के लिए हतमी इंतखाबी नतायज का ऐलान किया। मुंतखब उम्मीदवारों के फहरिस्त रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ के उर्दू AIS स्टडी सेंटर में सिविल सर्विसेज के मुफ्त कोचिंग के लिए दरखास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीखों में तौसी कर दी गई। ऑनलाइन फॉर्म 27 जुलाई 2026 तक भरे जा सकते हैं। इससे कबल आखिरी तारीख 14 जुलाई को खत्म हो गई थी। इसके साथ ही दाखिला इम्तिहान की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया गया जो अब 2 अगस्त 2026 को होगा। इम्तिहान के बाद मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात को मुफ्त कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल में रहने और खाने की सहूलत भी बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। तफसीली मालूमात और ऑनलाइन दरखास्त के लिए तलबा एकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये इतला एकेडमी के डायरेक्टर अनिमेश मिश्र और सेक्रेटरी शौकत अली की जानिब से जारी की गई। रियासत में आइंदा कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेजी से मुकम्मल की जा रही है। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के महफूज पुरम और मुनज्जम तरीके से तकमील को यकीनी बनाने के लिए जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। पूरी कांवड़ यात्रा की CCTV कैमरों ड्रोन से निगरानी की जाएगी और 900 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात होंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को उनकी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार। ये पुष्प नहीं जीवन रुचि हैं, ये नहीं प्रसून मुग्धावली हैं, इनकी रंगत से प्रकृति धन्य, ये नहीं पुष्प रचना शुचि हैं। बहनों, ये सुंदर पंक्तियां हैं पुष्प यानी कि फूलों पर लिखी गई एक अत्यंत सुंदर कविता की। बहनों, ये सच है कि फूलों का नाम आते ही हमारा मन प्रफुल्लित और आनंदित हो उठता है और इन्हें देखने से मन में सुकून और शांति के भाव भर जाते हैं। फूलों से ही उपवन भी सुरभित और दर्शनीय होता है। बहनों, फूलों की बातें आपसे करने का कारण है आज की हमारी चर्चा का विषय वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। बहनों, आज से करीब एक सदी पहले तक इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स की जानकारी बाहरी दुनिया को कम ही थी। वैसे इसकी खोज का किस्सा भी दिलचस्प है। जी हाँ बहनों, सन 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ, एरिक शिप्टन और आर एल होल्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से लौटने के दौरान अपना रास्ता भटक गए थे। तब वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो फूलों से भरी हुई थी। यहाँ

भी बाहरी दुनिया को कम ही थी। वैसे इसकी खोज का किस्सा भी दिलचस्प है। जी हाँ बहनों, सन 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ, एरिक शिप्टन और आर एल होल्सवर्थ माउंट कैमेट के सफल अभियान से लौटने के दौरान अपना रास्ता भटक गए थे। तब वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो फूलों से भरी हुई थी। यहाँ की सुंदरता से आकर्षित होने पर उन्होंने इसे वैली ऑफ फ्लावर्स नाम दिया। बाद में फ्रैंक स्माइथ ने इसी शीर्षक पर एक किताब भी लिखी। बहनों, वन्यजीव संस्थान द्वारा नियुक्त एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर चंद्र प्रकाश काला ने वर्ष 1993 के से घाटी के फूलों और उनके संरक्षण पर गहन अध्ययन किया। खास बात तो ये है कि वर्तमान में भी घाटी की सुंदरता वैसी ही है जैसी पहले थी। वैली ऑफ फ्लावर्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो हम आपको बताना चाहेंगे। ये लगभग 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई इस फूलों की घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3,352 से 3,658 मीटर तक है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है। हर दूसरे सप्ताह में कभी लाल तो कभी पीले तो कभी नीले रंग के फूलों से खिलने के कारण घाटी में प्रकृति अपना रंग बदलती है। यहाँ 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे पुष्प, जिनमें एनीमोन, जर्मेनियम, गेंदा, लिलियम, हिमालयी नीलापोस्त, डेल्फिनियम जैसे कई पुष्प शामिल हैं। खासकर 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य इस वैली में कुछ ऐसे पुष्प बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने वहां पर रंगोली बना दी हो। बहनों, घाटी के अस्तित्व को स्थानीय लोग परियों और ईश्वर द्वारा बसाए जाने की बात से भी जोड़ते हैं। सन 1982 में भारत सरकार द्वारा फूलों की इस घाटी को भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। फिर वर्ष 2005 में यूनेस्को ने इस घाटी के अद्भुत सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया। वैसे बहनों, फूलों की ताजगी और इनकी महक किसी अजूबे से कम नहीं।

0: बहनों, जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह आते और जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपने जीवन की यात्रा में दुखों और परेशानियों का सामना असीमित रूप में करना पड़ता है। ऐसे हालातों में मजबूती से खड़े रहना बड़ा ही साहसिक कार्य है। बहनों, ऐसा ही चित्र प्रस्तुत करती है आज की ये कहानी विधि का विधान। कहानीकार हैं कविता रायजादा।
1: बीएड का रिजल्ट आते ही जया उछल पड़ी। उसके 72% अंक आए थे। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया तो वह यह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी खुशी का इजहार करे तो कैसे करे। वह अतीत की यादों में खो गई और सोचने लगी, वह दिन भी क्या थे जब वह अपने 3 भाइयों और माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। बहुत खुश थी वह अपने छोटे से परिवार में, मगर विधि का विधान क्या है कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन उसके माता पिता का देहांत हो गया। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उन तीनों चारों भाई बहनों पर। अभी वह उस दुख से उबर भी न पाई थी कि एक दिन दोनों भाई स्कूल पढ़ने जा रहे थे, अचानक बस से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मौके पर ही दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। एक भाई और एक बहन क्या करते समझ ही नहीं पा रहे थे। रिश्तेदारों ने सहारा दिया, एक भाई और एक बहन कैसे साथ साथ रहेंगे, सोचकर विचार किया कि क्यों ना उस बहन की शादी कर दी जाए। कम से कम 15 साल की जवान बहन की जिम्मेदारी तो खत्म होगी। उस समय जया सिर्फ 10वीं पास थी। दुखों की मारी जया क्या करती, सिर से माता पिता और 2 भाइयों का साया भी छिन चुका था। क्या कहती जो कुछ रिश्तेदारों व भाई ने कहा, सर झुका के मान लिया, क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत छोटी थी। कुछ निर्णय लेने लायक वह नहीं थी और ना ही ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि वह मात्र 16 साल की थी और उसकी शादी कर दी गई। माता पिता थे नहीं, इसलिए शादी भाई ने ही की थी। शादी के बाद धीरे धीरे वह वक्त के साथ अपने दुखों को भूलने लगी, क्योंकि सारे जहां की खुशियां उसके दामन में थी।

जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बहुत लाड़ प्यार से मिल रहा था उसको ससुराल में। सभी उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड़ करते थे। देखते ही देखते 3 साल में उसके 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, 2 लड़कियां और 1 लड़का। वह अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। उसे नहीं पता था कि यह खुशी कुछ ही दिनों की है। अभी दुख खत्म नहीं हुए हैं, मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूटने ही वाला है। इन सब बातों से बेखबर उसके पति ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और 2 परिवार मिलकर निकल पड़े पहाड़ों की सैर पर। 6 दिन का समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। घर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, तो सबने सोचा क्यों ना नीलकंठ और घूम लिया जाए। तो फिर क्या था, ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी घूम गई नीलकंठ की तरफ। हंसते गाते मुस्कुराते अंत्याक्षरी खेलते कब नीलकंठ नज़दीक आ गया किसी को पता ही नहीं चला। अचानक ड्राइवर की झपकी लग गई और एक ही पल में खेल खत्म हो गया। पहाड़ों पर दौड़ती गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। चीख पुकार मच गई। वही गांव के कुछ लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, मगर जया के परिवार में से तो सिर्फ जया ही बची थी। उसका पति, 1 बेटा और 1 बेटी तीनों अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो गए। एक घर से 3-3 लाशें, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। 1 बेटी की लाश नहीं मिली थी, मगर खोजबीन करने पर एक पेड़ पर उसकी छोटी बेटी पुलिस को मिली। उसकी सांसें चल रही थीं। तुरंत अस्पताल लाया गया। उसके सिर से खून बह रहा था। खून भी इतना बह चुका था कि काफ़ी समय लग गया उसकी हालत सुधरने में। सिर में तो डॉक्टर्स को 27 टांके लगाने पड़े। जया को तो होश ही नहीं था। वह तो पूरे 1 महीने अस्पताल में ही भर्ती रही। उसे पता ही नहीं था कि उसका पति, बेटा और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उसका तो संसार ही उजड़ चुका था। उसकी कोख और सेज दोनों ही सूनी हो गई थी। जब उसे बताया गया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो अपने होशो हवास में अपने परिवार को हंसते मुस्कुराते हुए देखा था। वह तो आज तक करवा चौथ का व्रत रखती है, यही सोचकर कि एक ना एक दिन उसका पति अवश्य आएगा। 15 साल हो गए लेकिन उसका पति आज तक वापस नहीं आया। लेकिन जया ने भी हार नहीं मानी। जो 16 साल की लड़की हाई स्कूल पास करके आई थी, उसने धीरे धीरे इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी के साथ साथ बीए, एमए और बीएड कर लिया था। आजीविका चलाने के लिए उसने छोटे मोटे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करनी शुरू कर दी। साथ ही घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। आज वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी प्रिया, जो कि उस एक्सीडेंट में बच गई थी, उसका आगरा के ही विख्यात विश्वविद्यालय में बीएससी में दाखिला हो गया था। और वह अपने साथ साथ अपनी माँ जया को भी शिक्षा के अनुरूप आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, कर्म ही है जीवन का सार, कर्म ही है वेदों का आधार, कर्म का ही लेकर नव मंत्र पहुंचना होगा हमको पार।

0: अभी आपने सुनी कविता रायजादा की कहानी विधि का विधान। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश की ओर। बहनों, भारतीय नारी की शक्ति का परिचय इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक, आगे बढ़कर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं। जी हाँ बहनों, 8 नवंबर सन 2020 का दिन था जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा 122 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक थी राहीबाई सोमा पोपरे, जिन्हें सीड मदर यानी कि बीज माता के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल बहनों, राहीबाई के उपलब्धियों का सफर की कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब उनका पौत्र जहरीली सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ा। उसी पल राहीबाई ने जैविक खेती की शुरुआत की। बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रही, राहीबाई पोपरे ने बीजों का एक ऐसा बैंक भी तैयार किया जो किसानों को कम सिंचाई में भी अच्छी फसल दे सकता है। बहनों, राहीबाई सोमा पोपरे का जन्म सन 1964 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले गांव में हुआ। वह एक आदिवासी किसान महिला हैं। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के विलुप्त हो रहे 150 से भी ज्यादा पारंपरिक देसी बीजों का संरक्षण उन्होंने किया है। उन्होंने हाइब्रिड बीजों और रासायनिक खाद के उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक भी किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाने का संदेश भी वे दे रही हैं। कृषि के क्षेत्र में राहीबाई पोपरे के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा नारी शक्ति पुरस्कार, बीबीसी 100 वुमेन जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी उन्हें मिल चुकी है। बहनों, राहीबाई सोमा पोपरे उन सभी युवाओं के लिए भी एक उदाहरण है जो अपने कौशल के दम पर अलग अलग उद्योगों में अपनी आजीविका ढूंढ रहे हैं और पहचान बनाना चाहते हैं। जी हाँ, 15 जुलाई यानी कि आज विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका और उद्यमिता के लिए जरूरी तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रदान करके सशक्त बनाना है। इसकी शुरुआत सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: मॉनसून यानी बारिश का मौसम चिलचिलाती गर्मी से काफ़ी हद तक हमें राहत तो ज़रूर पहुंचाता है, लेकिन कई तरह की परेशानियों का सबब भी बन जाता है, जैसे कि सड़कों का जलमग्न हो जाना, सड़कों पर फिसलन और गड्ढे। बहनों, मॉनसून के दौरान यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें कुछ युक्तियां अपनानी चाहिए, जैसे बाहर निकलने से पहले अपने वाहन की जाँच करें, क्योंकि छोटी सी तकनीकी खराबी हमारी सड़क सुरक्षा को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है। टायरों में पर्याप्त हवा भरी है या नहीं, ये भी पहले ही चेक कर लें तो अच्छा है। बहनों, गीली सड़कें अक्सर फिसलन भरी होती हैं, ऐसे में तेज ब्रेक लगाने, गाड़ी तेज करने या अचानक मोड़ने से बचें, क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी फिसल सकती है और दुर्घटना हो सकती है। दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना सभी वाहन चालकों के लिए सामान्य मानसून सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश है। दो पहिया वाहन सवारी करते हुए कुछ लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं खुद को बरसात से बचाने के लिए, जबकि बहनों यह जोखिमपूर्ण भी हो सकता है, तो ऐसे में छाते का इस्तेमाल करने के बजाय रेनकोट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट और दो पहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। और हाँ बहनों, कहीं भी रवाना होने से पहले अपने वाहन में ईंधन पहले से ही भरवा लें। मॉनसून में पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हुए सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को ध्यान में रखें। बहनों, इस तरह मॉनसून में छोटी छोटी सावधानी अपनाकर हम अपने सफर और यातायात को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। आइए बहनों, अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम की ओर, जिसमें हमने की बातचीत श्री अनुपम से, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, मॉनसून में गाड़ी के रख रखाव के बारे में। अनुपम जी, हमारे कार्यक्रम घर संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
0: जैसा

0: कि अभी चल रहा है बरसात का सीजन, तो ऐसे में वो लोग जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में कुछ बताइए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि बरसातों के सीज़न में अधिकांश गाड़ियों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न होती है, वाइपर ब्लेड्स ख़राब होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, रियर ब्रेक शू जाम हो जाते हैं, टेल लैंप और हेड लैंप्स में पानी भरने की शिकायत आना शुरू हो जाती है, चलते चलते गाड़ी के अंदर पानी भर जाता है तो गाड़ी वहाँ रुक जाती है। इस तरह की शिकायतें बरसातों के सीज़न में आना शुरू हो जाती हैं।
0: बरसात में जल भराव होना तो बड़ी आम सी बात है, ऐसे में गाड़ी चलते चलते जब बंद हो जाए तो इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल, इसमें वाहन स्वामी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी कंपनीज में अपनी अपनी कार्स में एक सर्विस मैनुअल दी जाती है। उस सर्विस मैनुअल में टोल फ्री नंबर होता है, अगर किसी भी वाहन स्वामी की गाड़ी अगर रुक जाए या बंद हो जाए तो उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके आप टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, वह टेक्नीशियन आता है, आपकी गाड़ी ठीक करके जाएगा। अगर वो स्टार्ट फिर भी नहीं होती है तो वो लोग उस गाड़ी को टो करके अपने वर्कशॉप तक ले जाते हैं।
0: और बारिश में भीग जाने की वजह से गाड़ी में रस्टिंग यानी कि जंग लगने की जो समस्या हो जाती है, तो उससे कैसे निपटा जाए?
1: देखिए, बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा जंग लगने की जो समस्या आती है वो अंडर बॉडी में आती है, मतलब गाड़ी के निचले हिस्से में। इस चीज़ से बचने के लिए हम निचले हिस्से में एंटी रस्ट कोटिंग का उपयोग करते हैं, जो कि हमें हर 2 साल या 3 साल बाद करा लेनी चाहिए, उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। 0.1% अगर उसमें जंग आ भी जाती है तो सेकेंड कोटिंग या थर्ड कोटिंग वो बिल्कुल रिमूव हो जाती है, हट जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो अपर बॉडी की आती है। उस अपर बॉडी में जंग से बचने के लिए हम टेफ्लोन कोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीएफ कोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों कोटिंग से बरसात का जो पानी होता है वो बॉडी के ऊपर जमा नहीं होता, वो नीचे की तरफ फिसल जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब कीचड़ गाड़ी पे जम जाता है, बॉडी पे जम जाता है, और जब हम गाड़ी की सफाई करते हैं या करवाते हैं तो उससे जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस गाड़ी पे लगने की जो शंका रहती है वो भी इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
0: अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस में हमें और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में आपके क्या सुझाव हैं?
1: देखिए, और मौसम की अपेक्षा बरसात के मौसम में कार का मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। हमें थोड़ा जल्दी जल्दी वाइपर ब्लेड्स को चेक करते रहना चाहिए, जिससे फ्रंट व्यू मिरर पे स्क्रैचेस ना आए और ड्राइवर की विजिबिलिटी क्लियर रहे ड्राइव करते समय। दूसरा, एक चीज़ का और ध्यान रखें, गाड़ी को बॉडी कवर से ना ढककर किसी शेड के अंदर खड़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभार बॉडी कवर में छेद हो जाता है, उसमें फिर जैसा कि हमने पहले बात करी थी गाड़ी में जंग लगने की समस्या हो सकती है। गाड़ी पार्क करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि गाड़ी को हैंड ब्रेक पे ना खड़ी किया करें, क्योंकि मॉइस्चर जाने से रेयर जो ब्रेक पैड्स होते हैं उनमें मॉइस्चर चला जाता है और चिपकने की समस्या शुरू हो जाती है।
0: अनुपम जी, बरसात के दिनों में गाड़ी के रखरखाव संबंधी जो सुझाव आपने आज हमें दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: बहनों, अभी आनंद लेते हैं बारिश के इस गीत का।

बहनों, अब करते हैं बात पते की। ये सच है कि बारिश का मौसम धरती पर हरियाली को बढ़ाने का खूबसूरत काम करता है। इस दौरान बागवानी खूब अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि वातावरण में नमी बनी रहती है। अगर आप भी अपने गार्डन या बालकनी में रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाना चाहती हैं, तो बीज के बजाय कटिंग से इन्हें लगा सकती हैं। बहनों, कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले पौधे की 5 से 8 इंच लंबी और स्वस्थ शाखा चुनिए। नीचे की पत्तियां हटा दीजिए, सिर्फ ऊपर वाली 2 से 4 पत्तियां रहने दीजिए। गमले में मिट्टी, रेत और कंपोस्ट का मिश्रण तैयार कर लीजिए। इसमें कटिंग को करीब 2 से 3 इंच की गहराई तक लगाइए। इसके बाद हल्का पानी इसमें दीजिए और गमले को ऐसी जगह रखिए जहां हल्की धूप आती हो। मिट्टी में नमी को बनाए रखना है, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी जमा नहीं होने देना है। तो बहनों, आप भी अगर बागवानी की शौकीन हैं तो कटिंग से नए पौधे ज़रूर लगाएं। अब इसी के साथ कार्यक्रम घर संसार का समापन करते हुए सभी श्रोता बहनों को उनकी रेडियो दोस्त मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:46 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे सरदार जसवंत सिंह की गाई कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, सरदार जसवंत सिंह की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: movement would continue until victory, even if protesters had to sacrifice their lives. The rally witnessed strong anti-Pakistan slogans, with demonstrators pledging to continue their agitation. Meanwhile, the United Kashmir People's National Party strongly condemned the reported killing of 6 civilians by Pakistani security forces during clashes in Rawalkot. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. Furthermore, heatwave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak river has crossed the danger mark by 2 centimetres. More from our correspondent.
1: As the water level of the Gandak River continues to rise, 1,83,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 2,21,000 cubic. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Pari, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन. समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया. भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान. आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा. ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना. अब समाचार विस्तार से. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है. श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा. साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा. इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा. श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी

रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर

0: देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट

0: रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्चस्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह

0: में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे पंडित निखिल बनर्जी का मांड धुन में सितार वादन, उसके बाद मोहित कुमार का राग पहाड़ी धुन में गिटार वादन।

श्रोता, इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं अनपढ़ फिल्म से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में। राजा मेहंदी अली खान की गीत रचना को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं पारस मणि फिल्म से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये प्यारा संगीत आशा भोसले और विनोद राठौर के स्वर में।

श्रोता, त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत रचना साहिर की थी और संगीत दिया था खयाम ने। आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: श्रोताओ, आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

श्रोता, इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIRF पर। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अभी यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखर सवा डांगो अपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त ने उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में शौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 33,530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा, जिसमें अब हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए इस सभा में क्या कुछ खास लेकर आए हैं। श्रोताओं, अभी से कुछ देर बाद यानी कि 5:10 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम, जिसका नाम है सुर संध्या। युवाणी, जो कि युवाओं का दैनिक कार्यक्रम होता है, उसको हम प्रसारित करेंगे 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनिएगा वार्ताकार कनिका दुबे की वार्ता, सफलता की अनदेखी, कुंजी है सॉफ्ट स्किल्स।

शाम 6 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण लोक। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे भेंट वार्ता के अंतर्गत प्रेम सिंह से अनेंद्र सिंह की बातचीत। विषय होगा किसान उत्पादक संगठन।

श्रोताओं, 6:30 का वक्त होता है कार्यक्रम मजदूर मंडल का, और 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे शरद कुमार की वार्ता। विषय होगा मानव जाति के सच्चे हितैषी महर्षि सुश्रुत।

श्रोताओं, रात्रि 7:31 पर कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे सुनेगा एक और अनेक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 से रात्रि 8:45। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर से होगा रात्रि 10 बजे। जी हाँ श्रोताओं, ये आप नोट कर लीजिए कि हम फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम 10 बजे भी सुन सकेंगे।

सुरीला शिंदे की आवाज़ में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की रचना, संगीत आया रहमान का और फिल्म का नाम था 14 अकबर। लगान, इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में एक बार फिर से जावेद अख्तर की रचना, संगीत है AR रहमान का ही।

लाइव फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 5:30 होने को हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम, जिसका नाम है युवाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग युवा साथियों, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम

वाड़ी में। साथियों, आज हम आपके लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा दोस्तों, हर महान व्यक्तित्व अपने कार्यों से समाज और देश पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रेरणादायक नेता के बारे में जानेंगे जिन्होंने शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। जी साथियों, हम बात कर रहे हैं के कामराज जी की। तो इन्हीं से रिलेटेड आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न है कि के कामराज जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। अच्छा दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे स्वास्थ्य सेवाएं समय पर सरलता से और बिना किसी परेशानियों के मिले। जब तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो न केवल व्यवस्थाएं अधिक सुचारू बनती हैं, बल्कि मरीजों और हेल्थ केयर वर्कर्स दोनों के लिए सेवा का अनुभव और भी अधिक सहज और प्रभावी हो जाता है। इन्हीं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल टेक्निक का यूज और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज हम ऐसी ही एक महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ई सुश्रुत क्लिनिक। ये भारत सरकार द्वारा विकसित एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दोस्तों, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के सभी कार्यों को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाता है। इसका उद्देश्य है पेशेंट्स को बेहतर सेवा, डॉक्टर्स का समय बचाना, अस्पताल का कुशल प्रबंधन, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करना। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ई सुश्रुत क्लिनिक को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मुख्य उद्देश्य केवल अस्पतालों को कंप्यूटराइज्ड ही करना नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, सुरक्षित और मरीज केंद्रित बनाना है। आइए इसके प्रमुख उद्देश्यों पर भी नजर डालते हैं। हॉस्पिटल्स का डिजिटलाइजेशन, पेशेंट्स को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को सशक्त बनाना। अब दोस्तों आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। हर पेशेंट की यात्रा रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। इस मॉड्यूल के माध्यम से पेशेंट का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसे एक हॉस्पिटल आईडी प्रदान की जाती है और उसकी जानकारी सुरक्षित रूप से सिस्टम में दर्ज की जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज की अपॉइंटमेंट शेड्यूल की जाती है। यदि पेशेंट को एडमिट करने की आवश्यकता हो तो आईपीडी मॉड्यूल के माध्यम से बेड अलॉटमेंट, उपचार की निगरानी और डिस्चार्ज की पूरी प्रोसेस डिजिटल रूप से संचालित की जाती है। साथियों, ई सुश्रुत क्लिनिक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें मरीज का संपूर्ण चिकित्सा इतिहास, जांच रिपोर्ट, दवाइयों का विवरण रहता है, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी रेडियोलॉजी सेवाओं का पूरा प्रबंधन भी इसी प्रकार इस प्रणाली के माध्यम में रखा जाता है। रिपोर्ट सुरक्षित रूप से डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए उपलब्ध रहती है। इस प्रकार मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुलभ बनाने का ये प्रयास महर्षि सुश्रुत की चिकित्सा परंपरा को नई दिशा देता है। सुश्रुत जयंती हमें उनके अमूल्य योगदान की याद कराते हुए ये प्रेरणा देती है कि चिकित्सा क्षेत्र में ज्ञान, इनोवेशन और जनसेवा की भावना को निरंतर आगे बढ़ाया जा सकता है। आज 15 जुलाई को हम सुश्रुत जयंती मना रहे हैं। ये अवसर भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत के अद्वितीय योगदान को नमन करने का है। उनके आदर्श आज भी हमें मॉडर्न टेक्निक्स और चिकित्सा ज्ञान के कोऑर्डिनेशन से बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं विकसित कराने की प्रेरणा देते हैं। आज के समय में जब लोग बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद रखते हैं, तभी योजना जैसी डिजिटल पहल मरीजों और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सुविधाजनक समाधान प्रदान कर रही है। ये टेक्निक और चिकित्सा के मेल से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो दोस्तों, अभी आपने जाना ई सुश्रुत योजना के बारे में। अब साथियों समय है आपके मनोरंजन का, तो आप सभी को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

साथियों, आपका युवावाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप है अपनी रेडियो दोस्त स्वस्ति आर्य के साथ। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो, मन शांत हो, सोच पॉजिटिव हो और हर काम पूरे उत्साह से करने की शक्ति हो, तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन सकता है। इन सभी गुणों को विकसित करने का सबसे ईजी और इफेक्टिव माध्यम है योग। योग केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने का नाम नहीं है, बल्कि योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मतलब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है योग। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता होती है। योग इन सभी क्षमताओं का विकास करता है। योग करने से शरीर मजबूत और संतुलित रहता है। नियमित योग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और थकान कम होती है। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन और वृक्षासन जैसे आसन पूरे शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखते हैं। साथियों, आज की तेज जीवन शैली में तनाव, चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन आम होते जा रहे हैं। योग और प्राणायाम मन को शांत करते हैं।

0: ध्यान लगाने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और याद करने की शक्ति भी मजबूत होती है। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। स्टूडेंट्स के लिए योग विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि इससे पढ़ाई में ध्यान लगता है। योग हमें क्रोध, ईर्ष्या, डर और नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करना सिखाता है। इससे धैर्य, सहनशीलता, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। योग मस्तिष्क को सक्रिय और जागरूक बनाता है। योग हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर ही होती है। योग केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास कर सकता है। योग करने वाला व्यक्ति अनुशासित, सहयोगी, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनता है। ऐसा समाज अधिक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और समृद्ध होता है। दोस्तों, योग मस्तिष्क को सक्रिय और जागरूक बनाता है। इससे क्रिएटिविटी, तर्क शक्ति, समस्या समाधान की क्षमता और सीखने की गति बढ़ती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि नियमित योग करने वाले लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हमें एक आदर्श, संतुलित और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भारत ने योग की महान परंपरा पूरी दुनिया को दी है। आज विश्व के अनेक देशों में लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इसी महत्व को देखते हुए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का विश्व स्तर पर सम्मान है। अंत में साथियों, इतना ही कहना चाहेंगे कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमारी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। यदि हम रोज योग करें तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट और हेल्दी बन सकते हैं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि योग अपनाएं, जीवन सजाएं, अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अच्छा दोस्तों, आज की दुनिया में सफलता सिर्फ ज्ञान से ही नहीं जानी जाती, साथ ही अच्छे व्यवहार और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, समय का सही यूज जैसे गुण हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हर वर्ष 15 जुलाई को यानी आज ही के दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है ताकि युवाओं को आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथियों, इसी विषय पर और जानकारी लेते हैं एक वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है सफलता की अनदेखी कुंजी है सॉफ्ट स्किल्स। वार्ताकार है कनिका दुबे।
1: आज जब भी सफलता की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में अच्छी पढ़ाई, अच्छे अंक, बड़ी डिग्री या किसी तकनीकी कौशल का विचार आता है। ये सब निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जिस पर अक्सर लोग उतना ध्यान नहीं देते, जबकि वही सफलता की असली पहचान बन जाती है, और वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का अर्थ केवल अच्छी अंग्रेजी बोलना या मंच पर प्रभावशाली भाषण देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दूसरों से सम्मानपूर्वक बात करना, ध्यान से सुनना, समय का महत्व समझना, टीम के साथ मिलकर काम करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना और हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन अपने व्यवहार या संवाद के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंक शायद बहुत असाधारण नहीं हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनका व्यवहार और लोगों के साथ जुड़ने की कला उन्हें लगातार आगे ले जाती है, और यही सॉफ्ट स्किल्स की ताकत है। आज का युवा पहले की तुलना में कई अधिक जागरूक है। उसके पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। मोबाइल फोन पर कुछ ही मिनटों में नई नई चीजें सीखना संभव है। ऑनलाइन कोर्स हैं, वीडियो हैं, किताबें हैं और सीखने के अनगिनत साधन हैं। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या केवल जानकारी होना ही सफलता की गारंटी है? उत्तर है नहीं, क्योंकि जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारा व्यवहार काम आता है। जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी टीम के साथ काम करते हैं या किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तब हमारी सॉफ्ट स्किल्स ही सबसे पहले दिखाई देती हैं। आज के समय में एक और बदलाव साफ दिखाई देता है। हम पहले से कई अधिक डिजिटल हो गए हैं। हम रोज कई लोगों से ऑनलाइन

0: लाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन कई बार आमने सामने बातचीत करना कठिन लगने लगा है। धीरे धीरे हमारी सुनने की आदत कम होती जा रही है। हम जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, समझने की नहीं। जबकि अच्छी बातचीत की शुरुआत बोलने से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने से होती है। किसी भी रिश्ते की मजबूती हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यवसाय, हर जगह संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार छोटी सी गलतफहमी केवल इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि हमने सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनी या अपनी बात सही तरीके से नहीं कही। सॉफ्ट स्किल्स केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जीवन का भी हिस्सा है। घर में बड़ों से बात करने का तरीका, दोस्तों के साथ व्यवहार, किसी कर्मचारी का सम्मान करना, सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन बनाए रखना, समय का पालन करना, किसी की मदद करना, अपनी गलती स्वीकार करना, ये सभी बातें हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि सफलता की नींव छोटी छोटी आदतों से बनती है। समय पर पहुंचना, वादा निभाना, धन्यवाद कहना, क्षमा मांगना और दूसरों की मेहनत की सराहना करना, ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें लोगों के मन में हमारी पहचान बनाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी डिग्री याद नहीं रखते, बल्कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया वह याद रखते हैं। कई बार एक अच्छा व्यवहार उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें योग्यता भी नहीं खोल पाती। आज के युवाओं के सामने अवसर भी बहुत हैं और प्रतिस्पर्धा भी पहले से कई अधिक है। ऐसे में केवल ये सोचना कि अच्छी डिग्री मिल गई तो सफलता अपने आप मिल जाएगी शायद पर्याप्त नहीं है। आज हर क्षेत्र में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करें और दूसरों के साथ मिलकर काम करें। आत्मविश्वास भी एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हमें हर बात का उत्तर आना चाहिए। असली आत्मविश्वास ये है कि अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम विनम्रता से कह सकें कि मैं इसे सीखने का प्रयास करूंगा। सीखने की इच्छा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। नई तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं। कई ऐसे काम हैं जिन्हें अब मशीनें भी कर सकती हैं, लेकिन एक बात आज भी उतनी ही सच है कि संवेदनशीलता, ईमानदारी, सहयोग की भावना, भरोसा और मानवीय व्यवहार किसी मशीन से नहीं सीखा जा सकता। यही कारण है कि आने वाले समय में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का महत्व और भी बढ़ने वाला है। आज सोशल मीडिया पर कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति की सफलता दिखाई देती है और उसे देखकर कई युवा यह सोचने लगते हैं कि सफलता बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए, लेकिन अक्सर हमें केवल परिणाम दिखाई देता है, उसके पीछे की मेहनत, अनुशासन और लगातार खुद को बेहतर बनाने की आदत दिखाई नहीं देती। सॉफ्ट स्किल्स भी ऐसी ही आदतों से विकसित होती है। इनमें समय लगता है, लेकिन इनका प्रभाव जीवन भर रहता है। यह भी जरूरी है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर आज हम कल की तुलना में थोड़ा अधिक धैर्यवान बने हैं, थोड़ा बेहतर संवाद कर पा रहे हैं, लोगों की बात पहले से अधिक ध्यान से सुन रहे हैं और अपने काम की जिम्मेदारी समझ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। युवा अवस्था सीखने और खुद को गढ़ने का सबसे अच्छा समय है। इस समय जो आदतें बनती हैं, वही आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती हैं। इसलिए केवल किताबों से ज्ञान लेने के साथ साथ जीवन से भी सीखते रहिए। नए लोगों से मिलिए, अच्छे वक्ताओं को सुनिए, किताबें पढ़िए, अपने अनुभवों से सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, सफलता ये भी है कि उस यात्रा में लोग आप पर विश्वास करें, आपके साथ काम करना पसंद करें और आपके व्यक्तित्व का सम्मान करें। यही सम्मान लंबे समय तक साथ रहता है। इसलिए यदि हम सचमुच अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार, अपने संवाद, अपने धैर्य और अपने व्यक्तित्व पर भी बराबर ध्यान देना होगा। तो अपनी पढ़ाई और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार, अपने संवाद, अपने धैर्य और अपने व्यक्तित्व पर भी बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि डिग्री आपको एक अवसर दिला सकती है, लेकिन उस अवसर को पहचान में बदलने का काम आपकी सॉफ्ट स्किल्स ही करती है। और शायद यही कारण है कि सफलता की सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी रह जाने वाली कुंजी सॉफ्ट स्किल्स हैं।
1: वेलकम बैक साथियों।

अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था सफलता की अनदेखी कुंजी है सॉफ्ट स्किल्स। वार्ताकार थी कनिका दुबे। दोस्तों, हर समाज की पहचान केवल उसकी बिल्डिंग्स, टेक्निक या विकास से ही नहीं होती, बल्कि उसकी कला, संस्कृति और परंपराएं भी उसे एक अलग पहचान देती हैं। समय बदलता रहता है, लेकिन कुछ कलाएं अपनी सुंदरता, सादगी और सांस्कृतिक मूल्यों के कारण जनरेशन टू जनरेशन जीवित रहती है। ऐसी ही कलाएं हमें अपने इतिहास से जोड़ती हैं, अपनी जड़ों का एहसास कराती हैं और भारतीय संस्कृति की समृद्धता का परिचय देती हैं। जब भी हम किसी सुंदर कपड़े, आकर्षक डिजाइन या हाथों से बनाई गई कलाकृति को देखते हैं, तो उसके पीछे छिपी मेहनत, धैर्य और क्रिएटिविटी का एहसास होता है। आज के मॉडर्न और मशीन्स के युग में जहाँ काफ़ी चीज़ें बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं, वहीं कुछ कलाएं आज भी कलाकारों के हाथों की कल्पना शक्ति को जीवित रखे हुए हैं। ऐसी कलाएं केवल देखने में सुंदर ही नहीं लगती, बल्कि वो अपने साथ इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और समाज की अनगिनत कहानियों को भी लेकर चलती हैं। यही कारण है कि दोस्तों, भारतीय पारंपरिक कलाओं का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है, बल्कि समय के साथ उनकी पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय पारंपरिक कलाओं की इसी समृद्ध विरासत में एक अत्यंत विशिष्ट और मनमोहक कला है कलमकारी चित्रकला। ये केवल एक चित्रकला ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विरासत का जीवंत प्रतीक है। कलमकारी अपने आकर्षक डिजाइन्स, नेचुरल कलर्स और हाथ से बनाए गए सुंदर चित्रों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कलमकारी शब्द कलम और कारी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कलम से बनाई गई कला। इसमें सूती या रेशमी कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इस कला का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। पहले कलाकार कपड़ों पर रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं और चित्रों का वर्णन करते थे। कलमकारी बनाने की प्रोसेस में पहले कपड़े को साफ किया जाता है, फिर उस पर विशेष कलम से चित्र बनाए जाते हैं और बाद में प्राकृतिक रंगों से उन्हें रंगा जाता है। काला रंग लोहे से, पीला हल्दी से, नीला नील से और लाल विभिन्न पौधों की जड़ों से तैयार किया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि ये कला पर्यावरण के लिए अनुकूल मानी जाती है। कलमकारी का उपयोग साड़ियों, दुपट्टों, शॉल, बैग, बेडशीट और दीवार सजावट जैसी अनेक वस्तुओं में किया जाता है। ये कला भारतीय फैशन और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कलमकारी हजारों कलाकारों का रोजगार भी है, इसलिए ये कला को बचाना, प्रचार प्रसार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कलमकारी चित्रकला हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची कला केवल रंगों और आकृतियों में ही नहीं है, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और संस्कृति को जीवंत रखने में भी होती है। ये भारत की ऐसी अनमोल धरोहर है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है और हमें एक नई पहचान दिलाती है। आइए हम सभी इस अद्भुत कला का सम्मान करें, कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं और इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली जनरेशन तक सुरक्षित पहुंचाएं। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग इतिहास का हिस्सा बनते हैं, जबकि कुछ लोग अपने कार्यों से इतिहास रच देते हैं। सच्चा नेतृत्व वही है साथियों, जो लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे ही एक महान नेता की, जिन्होंने अपने कार्यों से लाखों बच्चों के भविष्य को नई दिशा दी है। जानते हैं दोस्तों, वो थे के कामराज जी, एक प्रेरणादायक नेता जिन्होंने शिक्षा और जनसेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि के कामराज जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो दोस्तों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। इनका जन्म 15 जुलाई यानी आज ही के दिन 1903 को तमिलनाडु में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे और आर्थिक कठिनाइयों के कारण केवल 6 क्लास तक ही पढ़ पाए। इसके बावजूद उन्होंने देश की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इंडिपेंडेंस के बाद वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। उनका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। उन्होंने हजारों नए स्कूल खुलवाए और गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील योजना भी शुरू की। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने इरिगेशन, कृषि उद्योग, सड़क और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी सादगी, ईमानदारी, जनसेवा के कारण उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। दोस्तों,

के कामराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने से होती है। शिक्षा, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का उनका ही संदेश हमें आज भी प्रेरणा देता है। तो आइए साथियों, इसी के साथ सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

अब साथियों समय है आप सभी से विदा लेने का, तो इसी के साथ साथियों कार्यक्रम युवावाणी समाप्त करने की अपने रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्ति आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

राम राम किसान भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण लोक और मैं हूं आपकी दोस्त उमा अली। आज के ग्रामीण लोक कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जो केवल पर्यावरण बचाने का संदेश नहीं देता बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी संस्कृति और हमारी माँ के प्रति सम्मान को भी एक नई पहचान देता है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार देता है तो वह है माँ। अगर प्रकृति में कोई ऐसा तत्व है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें खूबसूरत जीवन देता है तो वह है पेड़। माँ हमें जन्म देती है और पेड़ हमें जीवन देते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया ताकि हर व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल भी करे। किसान साथियों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और पानी की कमी जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं और हवा में जहर घुलता जा रहा है। ऐसे समय में केवल सरकारों की योजनाएं ही काफ़ी नहीं होती, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और यही संदेश देता है एक पेड़ माँ के नाम। हम अक्सर अपनी माँ को फूलों का गुलदस्ता देते हैं, साड़ी देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा उपहार हो सकता है जो वर्षों तक जीवित रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाए और माँ के प्यार की तरह हमेशा जीवन देता रहे। जी हाँ, वह उपहार है एक पेड़। जब आप अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाते हैं तो वह मिट्टी में लगाया गया केवल एक पौधा नहीं होता, वह आपकी भावनाओं का प्रतीक होता है। वे आपकी माँ के संस्कारों, उनके त्याग और उनके प्रेम का जीवित स्मारक बन जाता है। हमारे भारतीय संस्कारों में पेड़ों को हमेशा पूजनीय माना गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी जैसे पौधों का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की रक्षा है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि एक बड़ा पेड़ हर साल सैकड़ों किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन देता है, तापमान कम करता है और पक्षियों व जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। इसलिए जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम केवल पर्यावरण नहीं बचाते बल्कि भविष्य को सुरक्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल पौधा लगाकर फोटो खिंचवा लेना ही पर्याप्त नहीं है, असल जिम्मेदारी तो उसके बाद शुरू होती है। जिस तरह माँ हमें बचपन से बड़ा करती है, हमारी देखभाल करती है, उसी तरह उस पौधे को भी पानी देना, उसकी रक्षा करना और उसे बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा पौधा जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो वह वर्षों तक न जाने कितने लोगों को छाया देता है, फल देता है, स्वच्छ हवा देता है। कल्पना कीजिए, यदि देश का हर नागरिक अपनी माँ के नाम केवल एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ ही वर्षों में करोड़ों नए पेड़ धरती पर खड़े होंगे। इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। किसान साथियों, आज हम आधुनिकता के दौर में प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर पेड़ों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन असली पेड़ों की छांव में बैठने का अवसर

शहर के बच्चों को अक्सर कम ही मिल पाता है। ऐसे में यह अभियान केवल पेड़ लगाने का नहीं बल्कि प्रकृति से रिश्तों को फिर से जोड़ने का अभियान है। यदि आपके घर में माँ है तो उनके साथ मिलकर एक नया पौधा लगाइए। यदि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तब भी उनकी याद में एक पेड़ लगाइए। यकीन मानिए उस पेड़ की हर नई पत्ती आपको उनकी ममता का एहसास कराएगी। अपने आसपास के लोगों को भी इस अभियान से जोड़िए। एक छोटा सा कदम एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए साथियों, पेड़ लगाना एक दिन का काम है लेकिन पेड़ बचाना जीवन भर की जिम्मेदारी है। आज का समय हमसे केवल बातें नहीं बल्कि कार्रवाई की मांग कर रहा है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, मैं अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाऊंगा, उसकी देखभाल करूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। यही हमारी माँ के प्रति सच्चा सम्मान होगा और यही धरती माँ के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा भी होगी। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रकृति से अपना रिश्ता हमेशा बनाकर रखें। इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़कर जाती हूँ इस लोकगीत के साथ, मगर आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि अभी आपसे बहुत सारी बातें जो करनी है। तो चलिए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: साथियों, अक्सर देखा गया है कि छोटे या कहें कम रकबे के किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। बाजार तक उनकी पहुंच सीमित रहती है, लेकिन वहाँ वहीं अगर कई किसान मिलकर एक संगठन बना लें और उस पर काम करें तो छोटी छोटी ताकतें मिलकर बड़ी शक्ति बन जाती हैं। यही है किसान उत्पादक संगठन की सबसे बड़ी विशेषता। साथियों, आइए आज की भेंटवार्ता में जानते हैं कि क्या है किसान उत्पादक संगठन अर्थात FPO, यह कैसे काम करते हैं, इनके क्या लाभ हैं और यह किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार लाभदायक है। भेंटवार्ता का विषय है किसान उत्पादक संगठन FPO। प्रेम सिंह से भेंट कर रहे हैं अनिंद्र सिंह।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि हमारे देश के किसान की आय किसी भी तरह से बढ़नी चाहिए। ये काम कैसे किया जाए, इन्हीं कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अरदाया गांव से प्रेम सिंह जी हैं स्टूडियो में मौजूद। प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: धन्यवाद सर, नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपको बता दें, प्रेम सिंह जी एक FPO चलाते हैं। FPO का मतलब है किसान उत्पादक संगठन। क्या है, कैसे चलाते हैं, इस पर हम उन्हीं से सवालात करते हैं। प्रेम सिंह जी, किसान भाइयों को ये बताएं कि ये जो FPO आप चलाते हैं, ये दरअसल है क्या?
2: किसान भाइयों को मेरा सभी को नमस्कार। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संघ, ये 2013 का जो कंपनी एक्ट बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये समूह को रजिस्टर्ड कराया जाता है और वो लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होता है,
1: जी
2: जिसका रजिस्ट्रार ऑफिस कानपुर है, उसमें FPO को रजिस्टर्ड कराया जाता है। उसमें एक SIN नंबर मिलता है जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है।
1: ये किसान उत्पादक संगठन जो है, FPO जो है, उसका मकसद दरअसल क्या है? किसान भाई रजिस्ट्रेशन तो बाद में कराएं, पहले समझें तो सही कि ये FPO है क्या, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं किसान भाई?
2: हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि किसान की आमदनी में इजाफा हो, किसान की आमदनी बढ़े,
1: जी
2: और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में FPO के गठन के लिए भारत सरकार का नाबार्ड जो विभाग है, वो भी एक बैंक है, नाबार्ड के ही द्वारा मेरे FPO का गठन किया गया है।
1: जी जी
2: रजिस्ट्रेशन फीस जो ROC की थी वो नाबार्ड ने बहन की, और एक कंपनी में जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो चयनित किया गया उस कंपनी में, उसकी सैलरी भी 3 साल तक नाबार्ड ने बहन की। अब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे देश में स्मॉल फार्मर हैं, छोटे छोटे
1: छोटे छोटे
2: किसान भाई
1: किसान
2: हैं, लघु कृषक हैं, और लघु कृषक का खेती में जो इनपुट है, छोटा किसान अच्छी इनपुट कहीं से ला नहीं सकता, तो इसलिए इस फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। अगर एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 हेक्टेयर का क्लस्टर है, यानी 1,000 हेक्टेयर के किसान हमारे FPO में हैं, तो 1,000 हेक्टेयर के लिए जो उसका इनपुट होगा, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो दवा हो, अगर 1,000 हेक्टेयर क्लस्टर के लिए हम किसी कंपनी से लेते हैं तो मार्जिन रेट पर उपलब्ध FPO को करा देगी।
1: मैं आपकी बात जो समझ पा रहा हूं प्रेम सिंह जी, वो ये निकल के आती है कि सरकार का प्रयास है कि किसानों की एक कंपनी खड़ी कर दी जाए, छोटी मोटी, कुछ किसानों को मिला के। जब छोटे छोटे किसान खेती करते हैं तो सबकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उतने अच्छे से उसमें लागत लगा पाए। मान लीजिए छोटे छोटे किसान मिलके 1,000 एकड़ का आप क्लस्टर बना लेते हैं, तो जब वो एक साथ उसमें कोई खेती करते हैं तो उनकी जो लागत है, इनपुट कॉस्ट, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एक साथ किसी कंपनी से अपनी जरूरत का जो भी कृषि में लगने की लागत है उसको खरीद सकते हैं। जी
2: जी अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान की आमदनी को हमें दुगना करना है, ये दुगना कैसे होगी कि जो लगने वाली किसान की जो लागत है वो खेती में कमाए, उसका उत्पादन बढ़े और उसको उचित मूल्य मिले,
1: जो पैदावार है उसका मूल्य उचित मिलना
2: मूल्य
1: चाहिए
2: उचित
1: उसको।
2: मिले।
1: जी
2: अब मूल्य उचित कैसे मिलेगा, मान लीजिए कि हमारे जो फार्मर हैं, हमारी कंपनी से जो जुड़े हुए हैं, जैसे 1,000 हेक्टेयर का इस समय हम लोगों ने पैडी लगाया हुआ है,
1: जी
2: धान लगाया हुआ है, और 1,000 हेक्टेयर का जो उत्पादन है धान का, हम किसी कंपनी को देंगे तो वो अच्छे मार्जिन रेट में

0: उत्पादन का रेट हमें वो दे देगा
1: जी
0: और वो किसान को मिल जाएगा।
1: होता यह है गांव में कि हम किसान छोटे छोटे कुछ कुछ पैदा किए और फिर मंडी में ले जाके बैठ जाते हैं और उसका हमें दाम प्रॉपर मिल नहीं पाता। और जब हम इकट्ठा किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई कंपनी को जब हम सप्लाई कर रहे हैं अपना उत्पाद, तो जाहिर सी बात है उसका रेट भी हमें बेहतर मिल जाता है।
0: मंडी में अगर आपका 10 कुंटल कोई भी उत्पादन है और 100 कुंटल का कोई ढेर उत्पादन का पड़ा हुआ है, तो 100 कुंटल का रेट अच्छा मिलेगा और जो 10 कुंटल का ढेर पड़ा हुआ है उसका रेट कम मिलेगा। तो ऐसे ही उस किसान की आमदनी थोड़ी सी बढ़ सकती है।
1: क्योंकि इनपुट कॉस्ट भी कम हो गई, वहां लागत हमें कम लगी और उत्पादन का मूल्य अच्छा मिल गया, तो दोनों
0: तो
1: तरफ से फायदा हुआ।
0: दोनों
1: जी
0: तरफ से फायदा हुआ।
1: जी
0: अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे किसान भाई इससे जुड़े कैसे,
1: जी जी जी
0: क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उनको जानकारी नहीं है कि हम लोग कैसे अपना उत्पादक संगठन बनाएं। तो मैंने जैसे बताया, 2013 में एक कंपनी एक्ट केंद्रीय सरकार ने बनाया और उस एक्ट के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का
1: रजिस्ट्रेशन
0: रजिस्ट्रेशन होता है और वो भी लिमिटेड कंपनी के रूप में होता है।
1: जी
0: जैसे हमारे कंपनी के साथ में 500 फार्मर जुड़े हुए हैं, तो 500 फार्मर का जो शेयर है वो हमारी कंपनी में जमा है। सबसे पहले उस कंपनी में 10 लोगों की आवश्यकता होती है, उसमें 5 डायरेक्टर और 5 प्रमोटर। 5 डायरेक्टर और 5 प्रमोटर उस कंपनी को खड़ी करेंगे जब खड़ी हो जाएगी, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो,
1: होगा।
0: नहीं
1: रजिस्ट्रेशन तभी
0: होगा।
1: होगा जब ये पता हो कि भाई ये लोग चलाएंगे कंपनी को, ये डायरेक्टर हैं और ये उसके प्रमोटर्स हैं।
0: अब बात आती है कि डायरेक्टर बनने के लिए आवश्यकता क्या है।
1: जी,
0: डायरेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए,
1: जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो,
0: लीडरशिप क्वालिटी हो,
1: जो लोगों को इकट्ठा करके रख सके, वहन
0: कहीं पैसे की आवश्यकता है तो उसको भी
1: कर
0: कंपनी
1: पाए।
0: में खर्च कर सके। अगर
1: जी,
0: आरओसी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको डिन नंबर की आवश्यकता होती है। डिन नंबर जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होगा वो डिन नंबर लेगा। जब डिन नंबर उसको प्रोवाइड हो जाएगा पांचों डायरेक्टरों को, जब कंपनी में आरओसी कानपुर कंप्लाइन होगी, जब वहां से रजिस्ट्रेशन होगा और जब किसान को उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर
1: मिलेगा।
0: मिलेगा, तो हमारे एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया।
1: जी
0: उसके बाद में जितने भी किसान हम जोड़ सकें, 100 से लेकर के 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, जितना भी हम
1: बड़ा, जितना बड़ा
0: बड़ा
1: क्लस्टर
0: क्लस्टर
1: बनाना है।
0: बना लें,
1: जी
0: केंद्रीय जो सरकार है वो उसको सहायता जब देगी जब कम से कम 300 किसान उस कंपनी के साथ
1: जुड़े
0: जुड़े
1: हैं।
0: हुए होंगे।
1: जी, कम से कम 300
0: कम से
1: किसानों
0: कम
1: का
0: 300
1: तो क्लस्टर
0: किसान होना का
1: होना
0: आवश्यक
1: चाहिए। जी
0: आवश्यक है। तो 300 किसान अगर जुड़ जाएंगे, तो नाबार्ड ने जैसे रजिस्ट्रेशन कराया, सीईओ का पेमेंट दिया और नाबार्ड ने उस कंपनी के डायरेक्टर्स और कुछ फार्मर्स को विजिट कराया, दूसरा उसकी सेमिनार कराई। तो मतलब 3 साल में नाबार्ड उस कंपनी को सपोर्ट दे करके खड़ा करने का प्रयास करती है।
1: जी
0: 3 साल में कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं, फार्मर्स हैं, उनकी समझ में आ जाता है और वो कंपनी अपना आगे मूव कर देते हैं।
1: जी
0: तो ये कंपनी में किसान भाई जिस कंपनी में जुड़ेंगे, उस कंपनी में उस किसान को लाभ मिलेगा जिस कंपनी से जुड़ा हुआ होगा।
1: वो कंपनी का एक हिस्सेदार हो गया, शेयर होल्डर हो गया, तो जो भी कंपनी को समूह का जो लाभ मिलेगा वो उसके हिस्से में जो बनता है वो आएगा।
0: वो आएगा।
1: जी
0: और दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कि उसका जो शेयर जमा है उसमें तो इजाफा होगा ही होगा, लेकिन उसका जो इनपुट और आउटपुट, ये महत्वपूर्ण चीज है,
1: जी जी
0: यही चीज समझने की है। जब तक हम इनपुट और आउटपुट और उसका प्रोडक्शन का जो रेट, इन तीनों चीजों को गंभीरता से जब तक हमारा किसान नहीं समझेगा, मैं समझता हूं उसकी आमदनी जब तक
1: नहीं
0: नहीं बढ़
1: बढ़
0: पाएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
1: तो ये बात निकल के आती है कि हमारी जो खेती है वो व्यवसाय का एक रूप देने की कोशिश है एफपीओ के जरिए, जिसमें बहुत सारे किसान मिलके किसी एक क्लस्टर का निर्माण करके सरकार का जो ढांचा है उसके जो प्रयास हैं वो सारी व्यवस्था आपके एक क्लस्टर को प्रोवाइड की जाती है। जब आप बल्क में खेती करते हैं किसी चीज की तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्शन जो निकल के आता है, चूंकि आप सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं तो बड़ा प्रोडक्शन होता है, और जब हम बाजार में बेचते हैं तो हमें उसका बेहतर मूल्य भी मिल पाता है क्योंकि हम डायरेक्टली किसी एक बड़ी कंपनी से डील कर पाते हैं। प्रेम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो आए और जो किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बेहतर जानकारी किसान साथियों को मुहैया कराई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था किसान उत्पादक संगठन। प्रेम सिंह से भेंट कर रहे थे अनिंद्र सिंह।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, खेती में सही किस्म अच्छी पैदावार की पहली सीढ़ी है। इस मौसम में नई व उन्नत किस्मों का चयन आपकी पैदावार बढ़ाकर आपकी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, खेती में सही किस्म अच्छी पैदावार की पहली सीढ़ी है। इस मौसम में नई व उन्नत किस्मों का चयन आपकी पैदावार बढ़ाकर आपकी आय बढ़ा सकता है। मक्के के लिए HQPM 7, बाजरे के लिए HHP 311, अरहर के लिए पूसा अरहर 16, गेहूं के लिए DBW 187 और सरसों के लिए पूसा 00 मस्टर्ड अच्छी किस्में मानी जा रही हैं। फिर भी अपनी भूमि और क्षेत्र के अनुसार सही किस्म चुनने के लिए नज़दीकी विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से परामर्श अवश्य लें। और अब जानते हैं किसान साथियों मंडी भाव। गेहूं का भाव रहा 2400 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 6100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 7780 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर का भाव रहा 450 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल और काली सरसों का दाम रहा 6650 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये था किसान साथियों मंडी भाव। और अब आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: किसान साथियों आप जान लेते हैं मौसम का हाल। बीते 24 घंटों में आगरा व उसके आसपास का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री व न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों बहनों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती के सभी कार्य सावधानी से करें, समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं ओमाली आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम में लो। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम जिसका नाम है मजदूर मंडल।

श्रमिक बहनों और भाइयों, आप सभी को पूनम जैन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, आज कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ। भाई, हुआ यूं कि कुछ दिन पहले ही मेरा बैंक जाना हुआ, जहाँ काउंटर पर लगी लंबी लाइन में हमारा जो एक श्रमिक साथी है वो भी खड़ा था। इतने में ही हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो शायद ऑफिस में काम करता था, उसने श्रमिक भाई को पीछे धकियाते हुए क्लर्क से

कि पहले मेरा काम करो। और बोला, अरे भाई इन लोगों के पास तो समय ही समय है, पहले मेरा काम करो, मुझे ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। बस उस व्यक्ति की बात सुनकर जो हमारा श्रमिक भाई था वो भी बोल उठा कि भाई साहब आपकी तरह भाई हम भी तो अपना काम छोड़कर यहाँ खड़े हैं, जैसे आपके बिना ऑफिस का काम नहीं चलता, वैसे ही हमारे बिना यानी कि मेरे बिना कारखाने की मशीन नहीं चलने वाली। अब आपका काम ज़रूरी है तो भाई मेरा भी तो काम ज़रूरी है ना। और उनकी दोनों की ये बातें सुनकर थोड़ा मैं सोच में भी पड़ी और साथ ही अच्छा भी लगा कि चलो भाई देखिए हमारे श्रमिक साथी भी अब जागरूक हो रहे हैं, अपने काम को अपने आप को वो अहमियत देने लगे हैं, अपनी योग्यता को समझते हैं, अपनी भूमिका को समझते हैं भाई। तभी तो इतना आत्मविश्वास उनमें आने लगा है कि फिर चाहे कोई ऑफिसर हो या कोई और खड़ा हो अपनी बात कहने में वो हिचकिचाते नहीं। और साथियों यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छे समाज के विकास के लिए, एक देश की तरक्की के लिए, जहाँ का हर नागरिक चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे जो भी काम करता हो, पहले वो खुद का अपने आप को और अपने काम का जो है मोल समझता है। और भाई हमारे लिए तो ये बहुत ही संतोष की बात है कि शिक्षा और जागरूकता की वजह से हर कोई अब अपने आप को समझने लगा है, अपने आप को अहम मानने लगा है। और हमारे श्रमिक साथी भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके श्रम और मेहनत पर ही देश के विकास की नींव खड़ी है, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, आईटी सेक्टर हो या कोई भी ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, आज हमारे श्रमिकों और मेहनतकशों की वजह से ही लगातार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भाई हर चीज़ के निर्माण में तो हमारे श्रमिकों की मेहनत और कुशलता ही छिपी है ना। और इस बात को हमारे देश के सभी नागरिक भी अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो हर कोई शिक्षित भी हो रहा है, अपना कौशल विकास भी कर रहा है और न केवल खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी इस योग्य बना रहा है ताकि हर कोई देश और समाज की तरक्की का हिस्सा बन सके। और साथियों हमारे श्रमिकों की इसी अमूल्य योगदान की वजह से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी श्रमेव जयते का नारा दिया है और उनके हित के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो फिर उनके आर्थिक हितों से जुड़ी हों, उनके अच्छे भविष्य से जुड़ी हों या उनके बेहतर स्वास्थ्य से। अरे भाई देखिए स्वास्थ्य की बात आई तो फिर हमारा आज का जो सवाल है ना वो भी इसी से जुड़ा है। और सवाल है कि भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। भाई आपको मुश्किल लग रहा है क्या? तो चलिए भाई एक हिंट दे देते हैं कि आज उनकी जयंती भी है। अब शायद कुछ लोग शायद जवाब के नज़दीक पहुंच रहे हैं, है ना? और नहीं तो चलिए फिर जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से इसका जवाब जानने के लिए। और बस इसी सोच के साथ आगे बढ़िए कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, हर एक के अपने काम की अहमियत है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे सफाई कर्मियों, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, हमारे घरेलू सहायकों और तमाम तरह के गिग वर्कर्स की वजह से ही हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी सुगमता से चल रही है और हम आप सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही जिस तरह से सात रंगों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है, तो बस इसी तरह सभी वर्गों के मिलजुल कर काम करने से, मेहनत करने से ही ये जहां भी सुंदर बनता है।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मजदूर मंडल में और आपके साथ मैं हूँ पूनम जैन। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सभी के सहयोग से किसी भी समाज की तरक्की

0: की हो सकती है और अच्छे समाज से, उसकी अच्छी और प्रगतिशील सोच से ही देश भी आगे बढ़ता है। और इसी तरह की प्रगतिशील सोच को दर्शाती है हमारी आज की कहानी मन प्रेम।
1: हमारी कहानी का शीर्षक है मन प्रेम। आज कॉन्फ्रेंस हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। कुछ छात्र फील्ड में टहल रहे थे, कुछ प्रांगण में अध्वनी फाइलों को पूर्ण करने में व्यस्त थे। प्राचार्य जी प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर चुके थे, अब बस एग्जामिनर के आने का इंतजार था। आगंतुकों के आते ही प्रैक्टिकल का वाइवा शुरू हो गया था। छात्र छात्राएं कतारबद्ध मुद्रा में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पंक्ति में कुछ ही दूरी पर खड़ी आभा अपने साथी छात्रों से बतिया रही थी। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में स्वर्ण कंगन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वह हर्षोल्लास से इतनी परिपूर्ण थी कि उसकी चंचल बातें सबको सम्मोहित कर रही थी। बरसों बाद आभा को इतना प्रसन्नचित देखकर मैं उसके गुजरे कल में लौट गया। क्लास का फर्स्ट डे, स्टूडेंट बारी बारी से अपना परिचय दे रहे थे। अचानक आभा ने कक्ष में प्रवेश किया, जिसे सब छात्र अचरज की निगाहों से घूर रहे थे। आभा ने परिचय देते हुए कहा, मैं आभा, BA LLB। आभा की एजुकेशन को देखकर मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए आभा, कहाँ तुम टीचिंग लाइन में आ गई, क्या वकालत का पैसा रास नहीं आया? आभा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सर मुझे झूठ बोलना नहीं आता और यह पैसा तो झूठ की बुनियाद पर ही टिका है। फिर सीधे शब्दों में कहूँ, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रख सकती। आभा की बेबाक बातें सुनकर क्लास में शोरगुल बढ़ गया। छात्र छात्राएं आपस में कानाफूसी करने लगे थे। मैंने कक्ष के वातावरण को शांत करते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाइए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल लेते हैं और अपने अधूरे सपनों को बच्चों के ऊपर जबरन थोप देते हैं। वह बच्चों की रुचि और क्षमता पर तनिक भी सोच विचार नहीं करते हैं। फिर वही हर्ष होता है जो आभा का हुआ। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आभा गुड डिसीजन। पठन पाठन में ज्ञान की ऐसी अद्भुत गंगा बही कि क्या स्टूडेंट क्या टीचर सभी सराबोर हो गए। हमेशा हंसती खेलती आभा को कुछ दिनों से मैं गुमसुम सा देख रहा था। जब मैंने उससे उदासी का कारण जानना चाहा तो वह बेफर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो आभा, सब ठीक हो जाएगा, पंकज से मैं बात करूंगा। आभा रोते हुए बोली, सर अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ अब खत्म हो गया। मैंने कहा, मतलब? आभा बोली, रोहित सर ने पंकज से बात की है। पंकज बोल रहा है मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने क्रोधित होते हुए कहा, तुमसे प्यार उसने क्या अपने माता पिता से पूछ कर किया था? मेरी बात मानो, तुम भी उसे गुजरा हुआ कल समझकर भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं सर, यह मुझसे नहीं हो सकता। मैंने आभा को डांटते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें उसे भूलना होगा। पहली बार तो तुमने अनमैच्योर लड़के से प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है, जो अपनी जिंदगी के फैसले स्वयं नहीं ले सकता। आज भी वह अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। तुम उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और जहां तुम्हारे माता पिता कहें वहां शादी संबंध करो। आभा भावुक अंदाज में बोली, सर एक बार फूफा जी मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, घर के सब लोग राजी थे, लेकिन पंकज के चक्कर में मैंने इतना बढ़िया रिश्ता ठुकरा दिया। तब से घर में कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, सब मुझसे नाराज रहते हैं। अब आप ही बताइए सर मैं क्या करूं? कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में मथुरा वृंदावन चली जाऊं। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जिंदगी से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। माता पिता का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनसे बात करो, उनके नज़दीक जाओ, उनका दिल जीतो, वह जरूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। आभा से जब भी मेरी मुलाकात होती मेरा एक ही प्रश्न होता, आभा कोई रिश्ता आया? मेरे बार बार पूछने पर वह झुंझला कर बोली, मेरी यह समझ में नहीं आता आप हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, अब हम सर आपसे कभी बात नहीं करेंगे। मैंने आभा के कटु शब्दों का कभी बुरा नहीं माना। हाँ, उसके कटु अल्फाजों से इतना जरूर मेरी समझ में आ गया था कि यह लड़की

0: कि आज भी पंकज को चाहती है। एक लंबे अरसे के बाद आभा अपने सहपाठियों के वार्तालाप में मंत्रमुग्ध थी। उसके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही थी जैसे कठिन परिश्रम के बाद उसे कोई खुशी की प्राप्ति हुई हो जिसे वह संगी साथियों के साथ बांट रही हो। मैंने आभा के नज़दीक जाकर कहा, आभा इंगेजमेंट मुबारक हो। आभा मुस्कुराते हुए बोली, सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा, आभा मुझे किसी ने नहीं बताया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। समय बीतता गया। आखिर वह समय भी आ गया जब आभा कॉलेज कैंपस में अपनी शादी का निमंत्रण पत्र बांट रही थी। वो अपनी शादी में आने के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। कैंपस के लोग मुझे चिढ़ाने लगे, गुरुजी आपकी शिष्या की शादी है, क्या आप नहीं चलेंगे? आभा के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि उसकी सहेली ने मुझे फोन पर बताया, सर आपको कुछ पता चला? आभा के पिताजी एक्सपायर हो गए। यह खबर सुनते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। कैसे, उन्हें क्या हुआ? सहेली बोली, हार्ट अटैक पड़ा है। मैंने आभा की सहेली से कहा, आभा से बोलना इस दुख की घड़ी में हम सब उसके साथ हैं। आभा के पिता का स्वर्गवास हुए अभी 13 दिन भी नहीं बीते थे कि उसने मुझे फोन पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। जब वह सुनाकर खामोश हो गई तो मैंने कहा, अब मैं बोलूं, मैं तुम्हारी शादी के पीछे क्यों पड़ा रहता? वह तुम्हें मैं आज बताता हूँ। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं था, हाँ आत्मीय लगाव जरूर था क्योंकि तुम मेरी प्रिय शिष्या थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस आवारा कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लो। वैसे भी तुम बताती थी कि तुम्हारी माँ सौतेली है, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारे पिता को 2 अटैक आ चुके। मैंने सोचा अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचने से रही। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आभा को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, सॉरी सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना अधिक सोचते हैं।
1: तो साथियों, ये थी राकेश कुमार सिंह की लिखी कहानी मन प्रेम, जिसके जरिए भावनाओं और आत्मीयता का अच्छा अनुभव हुआ कि किस तरह से हम दूसरों के मनोभावों को महसूस कर सकते हैं। और भाई, हम भी तो अब आपके मनोभाव जान चुके हैं, तो चलिए जानते हैं आज के सवाल का जवाब। और जवाब है आचार्य सुश्रुत। साथियों, महान भारतीय शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत की आज जयंती भी है। अब आप सोचिए कि भाई आजकल जो तरह तरह की सर्जरी अस्पतालों में की जाती हैं उसका बेसिक ज्ञान आज से हजारों हजारों साल पहले हमारे विद्वान और महान आचार्य सुश्रुत ने तभी दे दिया था। सोचिए, उस समय ही प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, हड्डियों के जटिल जोड़ और ट्यूमर हटाने जैसी तमाम जटिल शल्य क्रियाओं के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में ही सूत्र लिख दिए थे। और साथियों, उन्हीं के साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा की भी शुरुआत हुई थी। भई हम तो सोचते हैं और हमें सोचना चाहिए, गर्व करना चाहिए अपनी उस संस्कृति के उस काल पर जब सुश्रुत जैसे महान आचार्य और उनके ज्ञान के बारे में हमें पता चला, क्योंकि ये तो सब किताबों के ज़रिए ही पता चला। हमें गर्व करना चाहिए उनके ज्ञान पर जिन्होंने कि मानव कल्याण और मानव जीवन को सरल बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करके बिना किसी तकनीक और बिना किसी साधनों के भी तमाम तरह की शल्य चिकित्साओं की खोज की। और यही नहीं, उसके लिए जो ज़रूरी औजार थे वो भी उन्होंने तैयार किए। और देखिए, हमारे इसी प्राचीन ज्ञान के सहारे आज सारी दुनिया में नई नई खोजें हो रही हैं। और इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज सभी युवाओं का आह्वान किया कि भारत की प्राचीन परंपरा, ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर देश के विकास में अपना योगदान दें। और साथियों, आज सुश्रुत जयंती के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 100 श्रुतम समारोह 2026 के जरिए सभी को अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल संपूर्ण मानव कल्याण के लिए करने का आह्वान भी किया। इस भावना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।

0: सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यानी कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, किसी को कोई दुख ना हो, सब जगह शांति ही शांति रहे। साथियों, इसी भाग को और आगे बढ़ाएंगे, सेहत पर और बात करेंगे, पर आइए उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब समय है आज की सेहत टिप का। तो भाई, आजकल चल रहा है बरसात का मौसम, तो ऐसे में कीट पतंगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना, और उनके काटने पर तकलीफ भी बढ़ेगी। तो अगर किसी को कोई बरसाती कीड़ा काट ले तो तुरंत ही उस जगह पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ें या फिर खाने वाले सोडे और पानी का पेस्ट बनाकर लगाएं। इससे क्या होगा कि सूजन और खुजली तुरंत ही बंद होगी और उसमें आराम मिलेगा। और अगर आपके घर पर ग्वार पाटा है, यानी कि एलोवेरा जेल है, तो उसको भी लगाने से जलन और खुजली शांत होती है। और फिर भी अगर आपकी तकलीफ नहीं कम होती, बढ़ रही है, तो भाई तुरंत ही डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बस हम तो यही कहेंगे कि मौसम चाहे कोई भी हो, आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मौसम में गुनगुनाते रहें ये बादलों का गीत।

0: तो साथियों, आपको पता ही है कि समय शुरू हो चुकी हैं बारिशें, और बारिशों का मौसम भाई कीट पतंगों के लिए तो मुफीद है ही। इसीलिए अपने घर के आसपास सफाई पर खास तौर पर ध्यान दें, पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं कीट पतंगों को ज़्यादा पनपने का अवसर देती हैं। इसीलिए सबसे खास है साफ सफाई का ध्यान रखना और पानी जमा नहीं होने देना है। और बारिश का मौसम भाई एक बहुत अच्छी चीज़ ये लेके आता है कि बारिश के मौसम में तो किसी भी तरह के पेड़ पौधे हैं वो बहुत जल्दी पनपते हैं। तो क्यों ना जो ज़्यादा पानी है उसको सोखने के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगाएं, और इस समय के लगाए हुए जो पौधे हैं वो ज़्यादा दिन तक पनपते हैं, उनको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जितनी भी खाली जगह है आपके घर के आसपास, वहाँ पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो जो पानी है ज़्यादा उसको भी सोखेगा, साथ में कीट पतंगे भी कम होंगे। और भई नीम का पेड़ तो इस समय वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको लग रहा है आसपास बहुत ज़्यादा कीट पतंगे हैं तो नीम की पत्तियों का धुआं भी ज़रूर दें, घर के अंदर भी दे सकते हैं और बाहर भी। उससे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मच्छर हैं, वो भागेंगे और आप भी सेहतमंद रहेंगे। इसी के साथ
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: विविधा का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शरद कुमार गुप्ता की वार्ता। विषय है मानव जाति के सच्चे हितैषी महर्षि सुश्रुत। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: 19 जून 2026 का ऐतिहासिक दिन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत के 2600 वर्ष पुराने योगदान की वैश्विक मान्यता का प्रतीक बना, जब इस दिन ब्रिटेन के एडिनबरा के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा के प्ले फेयर ऑडिटोरियम में महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर क्लियर मैकनॉट एवं भारत के महावाणिज्य दूत श्री सिद्धार्थ मलिक ने मूर्ति का अनावरण किया। प्रोफेसर चेरुबू ने आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के 36 विशेषज्ञों के योगदान वाली एक पुस्तक महर्षि सुश्रुत ए कंपेडियम फादर ऑफ सर्जरी का विमोचन भी किया। सन 1505 में स्थापित यह रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा विश्व की सबसे प्राचीन शल्य संस्थानों में से एक है। पत्रकार द हिंदू सहित अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस गरिमापूर्ण समारोह का विस्तृत प्रकाशन हुआ। हम भारतवासियों के लिए यह एक बार फिर गौरव एवं राष्ट्रीय सम्मान की बात है कि सदियों पूर्व की हमारे ऋषि मुनियों की तप, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, गणितीय, भौतिकी, खगोलीय संगणनाएं पूरे जगत के लिए एक विशिष्ट मार्गदर्शक आज भी हैं। शल्य विज्ञान के प्रथम दीप जग में जिनका यश अपार, शल्य विज्ञान के प्रथम दीप जग में जिनका यश अपार, महर्षि सुश्रुत का ज्ञान अमर, भारत का गौरव अपार। आयुर्वेद को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने वाले महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा विज्ञान को एक नई तकनीकी प्रदान की। उस युग में जब समाज में कोई भी चिकित्सीय पद्धति उपलब्ध नहीं थी, तब घोर विषम परिस्थितियों में भी महर्षि शल्य ने शल्य चिकित्सा का गहन अध्ययन किया, नए नए शोध किए गए जिसको आज के विज्ञान ने भी माना। यही नहीं, भारत सहित अन्य देशों में भी उनके इस शोध को स्वीकृति, उपयोगिता और सम्मान मिला। पुराणों के अनुसार देव अश्विनी कुमार चिकित्सकीय विशेषज्ञ थे, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ने का चमत्कार किया था। देवताओं के आदराचार्य अश्विनी कुमार ने ये विद्या देवराज इंद्र को सिखाई। समुद्र मंथन में मानव जाति के उद्धार हेतु भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद औषधियों का कलश लेकर अवतरित हुए। कालांतर में भगवान धन्वंतरी जी ने अपने शिष्य बनाए, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा को और अधिक क्रियाशील उपयोगी बनाया। आयुर्वेद की परंपरा के अनुसार वे धन्वंतरी के प्रमुख शिष्यों में से थे। विभिन्न शास्त्रों में महर्षि सुश्रुत को धन्वंतरी अवतार तक उल्लेखित किया गया है। आयुर्वेद के बृहत्तरी संहिता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम। सुश्रुत संहिता शल्य क्रियाओं का उत्कृष्ट संकलन है। सुश्रुत संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से सुना हुआ या प्रसिद्ध। महर्षि सुश्रुत के जीवन के बारे में विभिन्न शोध ग्रंथों में भिन्न भिन्न मत हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म प्राय 600 ईसा वर्ष पूर्व कन्या कुब्ज यानी आज के कन्नौज में हुआ था, किंतु उनका कर्म क्षेत्र काशी ही रहा। उन्होंने वहीं शिक्षा प्राप्त की, शल्य चिकित्सा का अभ्यास किया। उनके शोध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी काशी का विशेष उल्लेख मिलता है। महर्षि सुश्रुत मानव जाति के सर्वथा ऐसी ही थे, जिन्होंने मनुष्य जाति की शल्य क्रियाओं के माध्यम से बारंबार पीड़ा हरी। उन्होंने आयुर्वेद शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कारिक शोध किए। चिकित्सा की यह शाखा उसमें बहुत उपयोगी साबित होती थी। जब युद्ध में सैनिक घायल हो जाते थे, उनकी जीवन रक्षा के लिए शल्य चिकित्सा की तुरंत आवश्यकता होती थी। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के पितामह आचार्य सुश्रुत ने अपनी प्रसिद्ध सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान में मानव शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और अंगों का अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक वर्णन किया है। मृत शरीर सब विच्छेदन के आधार पर शरीर रचना का ऐसा स्पष्ट विवरण उस काल में अद्वितीय था। इसलिए आयुर्वेद के विद्यार्थियों को शरीर रचना समझने के लिए मुख्य रूप से सुश्रुत के शारीरिक स्थान का अध्ययन कराया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ उक्त सर्वथा उचित और प्रचलित है। सुश्रुत संहिता में पद्य शैली के भाग अधिक है। यह शल्य चिकित्सा के अभ्यास और सिद्धांत से संबंधित होने के साथ आयुर्वेदिक सूत्रों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महर्षि पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के एक शोध के अनुसार इसमें लगभग 300 से अधिक शल्य क्रियाओं और 120 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन मिलता है। इस संहिता में लगभग 1200 प्रकार के औषधियों का वर्णन है। महर्षि सुश्रुत ने न केवल चिकित्सा अभ्यास का वर्णन किया, बल्कि चिकित्सक के नैतिक और आचार संहिता पर भी बल दिया है। महर्षि सुश्रुत के योगदान को भारतीय चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने विशेष रूप से शल्य चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान और कई अन्य चिकित्सा अभ्यासों में महत्वपूर्ण नवाचार प्रस्तुत किए हैं।

0: मैर्सी जी ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन की विधि का वर्णन किया है जो आज भी उपयोगी है। सुरसुत संहिता में गर्भावस्था के दौरान देखभाल, प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात की देखभाल, साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ के इलाज के लिए विभिन्न उपचारों का वर्णन किया है। मस्तिष्क सर्जरी, कान की सर्जरी और नाक की सर्जरी भी उल्लिखित है। महर्षि सुरसुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की 8 प्रक्रियाओं छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐश्य, आहार्य, विश्रव्य व सीव्य का उल्लेख किया है। सुरसुत संहिता के प्रथम भाग में यानी पूर्व तंत्र में 5 हिस्से हैं, जिन्हें सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, कल्प स्थान तथा चिकित्सा स्थान के नाम से रखा गया है। इसके 120 अध्याय हैं, जिनमें आयुर्वेद के 4 प्राथमिक अंगों शल्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण के बारे में विस्तार से बताया गया है। महर्षि सुरसुत के ग्रंथ का द्वितीय भाग यानी उत्तर तंत्र को 64 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें आयुर्वेद के बाकी 4 अंगों शालाक्य, कौमार्य भृत्य, काय चिकित्सा तथा भूत विद्या के विषय का वर्णन किया गया है। आयुर्वेदीय साहित्य में शरीर रचना का जितना विशद विवेचन सुरसुत संहिता में प्राप्त होता है, उतना किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। प्रसिद्ध महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ भोपाल मध्य प्रदेश में भी आचार्य सुरसुत नामक शोध ग्रंथ में महर्षि सुरसुत के मानव के इतिहासी सिद्धक सार्थक शोध किए गए हैं। सुरसुत संहिता में वर्णित ज्ञान न केवल भारतीय चिकित्सा परंपरा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्व चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में भी एक अनमोल योगदान है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति कितनी ही आगे क्यों न हो, महर्षि सुरसुत के महत्व उनके मानव जाति के यथार्थ शोध को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उनकी खोज के आधार पर ही आज के शल्य चिकित्सा की प्रगति इतने सोपानों को पार कर पाई है। आज नए नए चिकित्सक नई नई आधुनिक पद्धतियों के तकनीकियों के प्रयोग के बावजूद उनके आविष्कारों का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने पर हितार्थ कर्तव्य के कारण महर्षि सुरसुत सच्चे मानव हितैषी थे। वे मूर्ति स्वरूप या शोध ग्रंथों के स्वरूप में भी सदैव हमें जीवित रहेंगे। महर्षि सुरसुत के समर्पित भाव पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। मानव में भगवान है, मानव में भगवान है, करते उनकी सेवा, पर हित मान प्रधान, पर हित मान प्रधान, मानते हुए उनको देवा। मानव जाति में ही तो है धर्म कर्म का भाव, मानव जाति में ही तो है धर्म कर्म का भाव, महर्षि सुरसुत ने किया पीड़ित संग निभाव, पीड़ित संग निभाव।
1: शरद कुमार गुप्ता की वार्ता मानव जाति के सच्चे हितैषी महर्षि सुश्रुत। इसी वार्ता के साथ कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: दमदार शक्तिशाली किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
3: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक

0: ये थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल।

0: कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,998 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
1: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए, जो बहुत पुराने शहर है उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
1: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समझौते पर और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब 0 हो गया है। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर, फुटवेयर समेत दूसरे उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
3: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, आज से ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक आज संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। वहीं प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख

0: हस्तियों के साथ भी संवाद किया। समिति को प्राप्त सुझावों और अभिमतों पर आगामी चरणों में विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी 10 राज्यों में जा चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले हैं और जो राष्ट्रहित में होगा वो संसद के सामने सिफारिश रखी जाएगी।
1: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमेटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्किल को स्किलिंग के साथ जोड़कर प्रदेश सरकार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।
2: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश के संबद्ध कॉलेजों के MBBS, MD, MS, नर्सिंग और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 55 मेधावी छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए बल्कि कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
3: हमें ऐसे वडिलों से, नागरिकों से, देश प्रेमियों से, शहीदों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा स्किल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास

रेडियो वेव 196.1 मीटर 31,530 के हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम लेकर आज आपके बीच उपस्थित है आपकी रेडियो हम सफर मुगल दीवारी। तो श्रोताओं, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग मन से खुश और तन से स्वस्थ होंगे। अब जरा मेरी भी खैरियत पूछ लीजिए। कैसे पूछें? सवाल तो वाजिब है। चलो कोई ना, मैं खुद ही बता देती हूँ। श्रोताओं, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे साथ कुछ अजीब सी बात हुई। हुआ ये कि मैं गई थी अपने एक दोस्त के घर। अब हम दोनों ठहरे बातों ने, बातों की कोई कमी तो है नहीं, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। हाँ, तो बात करते हुए मैं एक शब्द भूल गई, वो भी बहुत ही साधारण सा। मैं एकदम से स्टक। वो मेरे बात को आगे बढ़ने का सोच रही थी और मैं रुकी हुई थी कि मैं भूल कैसे गई। मैं तो परेशान हो गई। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, उस वर्ड को तो छोड़ देते हैं और मैं तुम्हारा मतलब समझ गई ना, तो उससे तुम्हें ये बात को आगे बढ़ाओ। क्या मतलब है उस चीज का कि एक वर्ड भूल गई? मैंने शॉक्ड होके उससे कहा कि नहीं यार, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा अक्सर होने लगा है। श्रोताओं, इत्तेफाक से उसके भैया घर पे ही थे, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी पूछी और कहा कि अगर बीमार हो तो बताओ। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो फिर ये लेटेंट टायर्डनेस है, यानी छिपी हुई थकान, मन की थकान, जिसके साथ हम जी तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता है, और ये बहुत ही नॉर्मल है आजकल। तो मैंने इस बारे में उनसे बहुत सारी बातें करी और सोचा कि क्यों ना इस बारे में आप सबसे भी बात की जाए, क्योंकि आजकल के युवाओं को इसकी लत लग गई है। लत कहना सही नहीं होगा, ये है भी और नहीं भी, क्योंकि इस बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो इस बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन इस गीत को सुन लेते हैं, इससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और एनर्जी रहेगी तब हम इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना?

सही बात है, हम नए हैं तो हमारा अंदाज क्यों पुराना हो, तो हमारी बातें भी किसी नए टॉपिक पे ही होनी चाहिए। तो ये बताइए, एनर्जी आई कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं अपनी बातों के सिलसिले में। तो अब सवाल श्रोताओं ये भी है कि आखिर ये छिपी हुई थकान हमारी जिंदगी में आती कैसे है, क्योंकि ये हमेशा मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ कहकर तो नहीं आती, कई बार ये बिन बताए भी आती है। क्या आपको लगता है कि 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी जब अलार्म बजता है तो मन करता है कि अरे यार 5 मिनट और, 10 मिनट और ये कहते कहते 15 मिनट निकल जाता है, उसके बावजूद उठ भी गए मनपसंद अदरक वाली चाय या फिर कड़क इलायची वाली चाय पी भी ली, फिर भी वही लो एनर्जी है ना। अब ये बताइए कि ये आपके साथ रोज होता है या कभी कभार? देखिए श्रोताओं, अगर रोज हो रहा है तो हो सकता है कि आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हर किसी के अंदर एक ही सिस्टम हो ये भी जरूरी नहीं, जैसे कि काम में मन का ना लगना, चिड़चिड़ापन, उबासी का बार बार आना, बातों का भूल जाना, जैसे कि मेरे साथ हुआ, किसी को पढ़ते समय एक ही लाइन को बार बार पढ़ना पड़े, कॉन्फिडेंस का खत्म हो जाना।

धैर्य का खत्म हो जाना। और सबसे दिलचस्प पहलू, सब कुछ नॉर्मल होता है, हम जरूरत का हर काम कर रहे होते हैं, पर अब मन नहीं है या अभी मन नहीं है, चीजें इस तरफ जा रही होती हैं, और यही है लेटेंट टायर्डनेस। श्रोताओं, एक छोटी सी तो जिंदगी मिली है और इतनी सारी परेशानी, दिमाग पहेलियों में उलझा रहता है, जैसे कि इस गाने में।

वो तो सोने से कुछ देर पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूरी बना लें। श्रोताओं, ये एक छोटा सा सुझाव था मेरी तरफ से, लेकिन अगर आप ये कहें कि अब इतना सब कुछ सुनने के बाद कि ये छिपी हुई थकान जो है, क्या इसे बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल निकाला जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बहुत बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से की जाती है। श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक जिंदगी पूरी तरह वैसी नहीं हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं, तो हम बेहतर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे बदलाव ही हमारी जिंदगी में बड़ा असर कर जाते हैं।

प्यारे श्रोताओं, बात नींद के क्वालिटी की हो रही थी कि अगर देर रात तक मोबाइल देखते देखते नींद आई है तो फिर, या फिर रात में कई बार नींद खुली है या फिर सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लिया जाए, तो यकीन माने आपको सुकून नहीं मिल रहा है। अगर संभव

सुना, वैसे आपको अपनी माँ की बात याद आती है कि सबका जड़, सारी मुसीबत का जड़ ये मोबाइल ही है। पर अब क्या ही करें, खाना खाने, सोने और उठने का कोई टाइम फिक्स करें। शरीर को जैसा रखेंगे ना श्रोताओं, ये वैसे ही काम करेगा। भोजन में वो चीज़ें शामिल करें जो तरोताज़ा और हल्का फील कराएं। मसाले और तेल से बने जितनी भी चीज़ें आपके पसंद के मुताबिक हैं और आपको खुश कर दें और आपको एनर्जी दें। आपको लगता है कि ऐसा सब कुछ होना चाहिए, तो आप बिल्कुल ना में गर्दन हिलाइए। ये आपको एनर्जी ज़रूर देंगे क्योंकि आपको खुश कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ये सुस्त कर रहे हैं। संयमित और संतुलित भोजन आपको मिलना चाहिए। एक्सरसाइज, योग करें और वॉक करें। दिनचर्या में इन्हें रोजाना शामिल कर लें, एक खाने की तरह। होगा क्या कि आपकी तोंद भी कम होगी और चेहरे पे ग्लो भी आएगा। पानी पीते रहिए, चाहे मौसम कोई भी हो। श्रोता, सबसे जरूरी बात, तनाव यानी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। स्ट्रेस लेने से वैसे भी समस्याएं तो खत्म होंगी नहीं। दबाव में ना रहें कि कोई क्या कहेगा। अरे भाई, जिसका जो काम है उसका वो काम तो करने दीजिए, है कि नहीं।

आपका एक ही काम है कि टेंशन को दूर भगाएं और गुनगुनाते जाएं और चलते जाएं। ये मत सोचें कि वो चार लोग जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, क्या कहेंगे। कसम से कह रही हूँ, मैंने वो चार लोग ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिले। हाँ, अगर आपको मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये गाना आप सबके नाम।

शिवम, ये जो मोबाइल हम देखते हैं ना, थक जाने के बाद कहते हैं कि रुको थोड़े रील्स देख लेते हैं, थोड़े पोस्ट देख लेते हैं, कुछ पोस्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम रिलैक्स होंगे, हमारा एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन ये हमें एंटरटेन करने के साथ साथ हमारे मन को थका भी रहा है। शुभम, आपको नहीं लगता कि ये सारे सिम्टम जो मैं आपको बता रही हूँ पहले भी थे, पर चूंकि हम अब जागरूक हुए हैं तो हमें पता चल रहा है कि वजह क्या है और निवारण क्या है। और गनीमत है इस बात का कि हमें पता चल रहा है। तो फिर खुद पर विश्वास रखिए, जितना किया बेस्ट किया, आगे देखेंगे, है ना। ये जो बातें हैं ये अपने मन में बिठा के रख लीजिए कि हम कभी भी थक सकते हैं, और क्रिटिसिज्म की तरफ ध्यान नहीं देना है। हम अपने क्षमता के अनुसार ही काम करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। श्रोताओं, अपने अपने पसंद की चीजें कीजिए, जैसे गाना सुनना हुआ, जैसे कोई पेंटिंग करना हुआ, डांस करना हुआ, खाना बनाना हुआ, और कई लोगों को तो खाना खाना भी बहुत पसंद है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हेल्दी खाइए और खेलिए। खेल पे कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है क्योंकि उससे मन और तन दोनों स्वस्थ होता है। लेकिन इन सब को करने के बावजूद अगर आपकी थकान बनी रहती है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। याद रखें, ना ही किसी भी सिचुएशन को इतना हल्का लें कि वो गंभीर बन जाए, और ना ही इतना गंभीर लें कि वो खतरनाक बन जाए। तो हमेशा खुश रहिए और खुश रहने दीजिए।

इसी गीत के साथ आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी लेती है आपसे अलविदा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और कार्यक्रम जो कि फिल्म संगीत का है। कार्यक्रम का नाम है एक और अनेक।

उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म दस्तक का ये गीत। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार थे राजेश रोशन। उदित नारायण की आवाज में उनके साथ हैं महालक्ष्मी अय्यर। फिल्म का नाम है दिल से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

राजकुमार। इस फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत हमने लिया है फिल्म देवदास से। आवाज है उदित नारायण की।

सारा। इस फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत था मदन मोहन का। एक और अनेक कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म लावारिस से। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है राजेश रोशन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर ही आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कुछ कुछ होता है। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार को लिखा है समीर ने, गीतकार है समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित।

राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में समीर का लिखा गीत, संगीत था नदीम श्रवण का। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत पापा कहते हैं इस फिल्म से हमने लिया है। जावेद अख्तर के गीत को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने और आवाज है उदित नारायण की।

कहते हैं इस फिल्म के गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन

0: और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
1: हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champion

0: 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया के किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए होगी। इसे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनद के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमीकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इख्तिताम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा।
1: Semicon 2.0.
2: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इस पे प्रावधान।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमेरिका, जापान, यूरोप यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि इस सेमीकॉन 2.0 के तहत 4 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए ये स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
3: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
3: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को

0: विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को सिफर महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक

0: इस मुआहदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहदा भारत और बरतानिया के दरमियान इकतसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के दहरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमेरिका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तनसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मोहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाही पासदारन इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहरे हिंद में अमेरिका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह और बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया, ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरिए तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी।

चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी एसआईआर मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0-2 से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के नौ उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन $14 करोड़ मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया,
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौते

0: बातों से अलग देखते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेक्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के तौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पेटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे, और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है, हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
0: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव

0: सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के जीरो हो रही है, मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें जीरो हो रही है, इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें जीरो हो रहा है, ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% है जीरो हो जाएगा, लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें जीरो हो जाएगा, और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी जीरो हो जाएगा, और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा कि हमारा शेयर सिर्फ 6% है वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी, उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है वो भी बढ़ जा सकता है, ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है, इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है, ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स केमिकल्स फर्टिलाइजर्स फार्मास्यूटिकल्स ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है जॉब इंटेंसिव है इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है, उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने का डर है, उसके साथ साथ जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं ये सारे सेक्टर्स में और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं, इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है, उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स कटते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं, इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है बिजनेस की जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थ हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं, एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है एक कोटा के थ्रू। जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड

0: प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो PLI है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कॉम्पिटिशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे FTA करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई FTA साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने FTA शुरू किए, मॉरिशस से शुरू होकर अभी हम आज UK इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की
1: जी,
2: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है। उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत IT और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
0: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी IT सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि FTA आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर FTA की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द FTA। अभी FTA के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों खैर ज्यादातर

0: पर हमें जो एक्सेस है, जिसके लिए हमने एफटीओ को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी, जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ। तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं ये समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में, उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे। लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर ली हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है, वहां पे जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफी एक धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है, उसमें एक काफी एक धक्का मिला है उसको। और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, यू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है, उसके अंदर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट जो होती है, वो 15 से 20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा, ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी, वो इन्वेस्टमेंट की थी, कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
0: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही है, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू

0: मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमईज के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इंप्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
2: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीजों में, सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती है, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विथ सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती है वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी, और वो

0: और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा। हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया, थैंक
2: यू, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जो जीता वही सिकंदर। आवाज है उदित नारायण और साधना सरगम की। गीत को लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीत है जतिन ललित का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उसमें है जो जीता वही सिकंदर, मुझसे शादी करोगी, राजा, कयामत से कयामत तक, हम दिल दे चुके सनम और इश्क। मिली जुली आवाजें थी उदित नारायण, साधना सरगम, अलका याग्निक की। गीतकार रहे मजरू सुल्तानपुरी, समीर और महबूब। संगीतकार रहे जतन ललित, अनु मलिक, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, स्माइल दरबार। तो इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से राग मालकोस।

这忙个咋呀？咋忙个你？咋咋咋忙个咋？你这个咋忙你？这咋咋忙你了？这个忙咋你这？

Good.

शारण जय कहूं जग माता

Ma da ga ma ga da ni da da ni da ga ni da da ni da da ni da ga ni.

Ga ra ne ra ma sa ne ra ma ga.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री

0: नरसिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन डीआईबीडी और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the